0: होते हैं. शी शुडंट हैव टू एक्सप्लेन हर आइडेंटिटी. She shouldn't have to tell you she's Indian. If anyone needs a lesson in who belongs to this country, it's not this little girl Tinkle. It's the ignorance that questioned her in the first place.
1: Hello guys, हमको एक अम्मी ना हम कैसे बोले एक आप चाइनीज सीखे ऐसे बोले मेरा अब इंडिया है हम भी इंडिया है आप लोग ऐसे मत बोलो हम लोग इंडिया है आप हम लोग को चाइनीज बोलने से हम बहुत गुस्सा होते हैं बहुत दुखी होते हैं प्लीज हमको इससे मत बोलो हम बहुत दुखी होगा तो हमको इंडिया बोलो इंडिया हमको चाइनीज मत बोलो हम बहुत दुखी लगते हैं चाइनीज बोलने से हम इंडिया का है हम ईटानगर में बैठते हैं तो आप लोग ऐसे मत बोलो प्लीज बाय बाय.
0: An adorable little Tinkle and her mother Ayum joined me from Itanagar, Arunachal Pradesh, just a short while ago. A 4-year-old Tinkle from Arunachal Pradesh has gone super viral. She's got the entire country in tears, cooing with affection over her video, where she, with a very, very serious face, says, "Don't call me Chinese, I am Indian." She has won hearts everywhere in the country. And I am so honored, so happy to be joined today by little Tinkle, or Tinkle ki ma, Ayum, is also with us. Ayum ji, pranam. Tinkle ka video itna viral ho gaya hai, to mera pehla sawal Tinkle se hi hai. Tinkle, आपने देखा आपका वीडियो इतना वायरल हो गया है इंडिया में आपने देखा वो उस वीडियो में आप क्या बोल रहे हैं टिंकल
2: क्या बोला था बोल दो क्यों मैं क्या बोला था
1: भैया हमको एक भैया हमको चाइनीज बोले
0: कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज आप तो इंडियन हैं कौन बोल रहे हैं आपको चाइनीज
1: ए भैया
0: नहीं नहीं आप तो बिल्कुल इंडियन हो टिंकल आप तो हमारे जैसे हैं इंडियन
1: हम इंडिया
0: है आयुम जी ये आइडिया कहां से आया टिंकल ने ये वीडियो कैसे बनाया क्यों बनाया उनकी उसके मन में क्यों था ये
2: हमको भी इतना आइडिया नहीं था तो टिंकल का एक वीडियो था आइसक्रीम खाने वाला वीडियो जो तो वो आइसक्रीम वीडियो में टिंकल जो हिंदी बोला था तो एक आदमी जो टिंकल को कमेंट किया है ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के तो टिंकल को दुखी हो गया तो टिंकल ने वीडियो बना लिया
0: टिंकल आपको बुरा लगा ये कॉमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में आपको बुरा लगा नहीं मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो और टिंकल हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं आप सल्यूट करते हैं आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं तो आप काफी देश प्रेमी हैं इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप टिंकल और टिंकल आपके पापा पुलिस में हैं है ना
1: मेरा अबू पुलिस बनते हैं
0: तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए एक बार हमारे लिए देश के लिए नेशनल एंथम गाओ टिंकल अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे Yes, standing.
1: Yeah, not a man. Yeah, not a man.

0: सल्यूट टू यू ट्विंकल, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमको, सबने सुना आपको NDTV पर और देश में, और हम बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं आपको। नमस्ते ट्विंकल, नमस्ते आयुम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, जय हिंद।
1: थैंक यू, थैंक यू।

0: A term. India is changing gears. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones to fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right, and Center.
0: Hard facts.
1: War struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
2: In the Kargil area.
1: North Ukraine.
3: In France. In Italy.
1: At Srinagar.
3: Ryan is France.
1: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
4: Welcome, my name is Reef Khorasani and you're watching NDTV. We've got a whole lot lined up for you in action-packed bulletin early this morning, but let's first take you through the headlines of the hour. Devanti Mathur Rao is escalating with the Congress sticking to its two-stanza stance. Home Minister Amit Shah has called the decision anti-national, while the Congress has cited a 1937 resolution and a 90-year-old tradition. Politics over the US envoy Sergey Gore's Jammu and Kashmir visit has intensified, with Mehbooba Mufti questioning Umar Abdullah's silence. The PTP says issues concerning Jammu and Kashmir and the Muslim world should be raised with Delhi and not the United States. The Supreme Court has ordered a probe into the police action during the Delhi violence. A five-member panel will examine allegations including pellet gun use and lathi charges, with the court ordering authorities to preserve all the footage. Tamil Nadu Chief Minister Vijay is seeking assurances from the centre on delimitation, triggering a fresh political row. The DMK has accused Vijay of softening his stance, while the TVK insists that there have been no changes in position. Let's now take you through the top story of the hour. The political row over Vande Mataram is intensifying, with the Congress and the BJP locked in a war of words. Congress's decision to sing only the first two stanzas at its events has now drawn sharp BJP criticism. Home Minister Amit Shah has called it anti-national, while Delhi Chief Minister Rekha Gupta has accused the Congress of pruning the national song for vote bank politics. Congress is defending its 90-year-old tradition, citing the 1937 resolution backed by leaders including Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore. Meanwhile, the Modi government is taking full rendition to university campuses. At the heart of Gen Z outreach, a minister will visit a university every single day under the One Day, One University initiative. Full Vande Mataram will also be played at these programs. Let's in fact listen in to what the Union Home Minister Amit Shah had to say in Vande Mataram Rao yesterday.
5: 1937 के अधिवेशन में जब इसको शामिल किया गया, ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर शामिल किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको चिट्ठी लिखकर सलाह मांगी और उन्होंने सलाह के ऊपर इसको शामिल कराया और उन्होंने ही उसमें से जितना पार्ट था वो तय किया था। सरदार पटेल भी उस अधिवेशन में थे, तो उनके बारे में इनकी क्या राय है? क्योंकि बाकी लोगों के बारे में तो ये बोलते रहते हैं, उनके बारे में बताएं क्या राय है? हम तो अपने पुरखों की विरासत को लेकर चल रहे हैं, इनको तो नया नया प्रेम जागा है। और जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे उस समय।
6: कांग्रेस से 1937 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे तमाम लोग मौजूद थे और जिन्होंने ये तय किया था कि सिर्फ दो स्टेंजा ही पढ़ा जाएगा उसका। तो इसलिए उस ये हम लोग ने तय किया कल वर्किंग कमेटी में, कांग्रेस अपने कार्यक्रम में जो परंपरा हमारी चली आ रही है 90 सालों से, हम उस परंपरा के अनुसार हम इस गीत को गाएंगे।
2: हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम गाते गाते दम तोड़ दिए थे। आप लोग कहाँ थे? इतने साल आप लोग भी यही गाना गाए थे। 12 साल से आप हुकूमत में बैठे, आपने भी यही गाना गाए थे। रातों रात आप याद आ गए। जो आदमी लोग पार्लियामेंट में आ नहीं सकते, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे सकते, बच्चों पर आपकी ताकत लाद के आप उनको पिटवाते हैं, आप हमें समझा रहे हैं कि हम क्या चीज है।
3: कांग्रेस पार्टी सिंस 1937 has the same thoughts, same decision on regarding Vande Mataram. That is, in 1937, Calcutta session, Congress Working Committee decided that to attended and participated, discussed by Mahatma Ravindranath Tagore. This illuminaries of Congress Party sat together and decided that first two stanzas of Vande Mataram will be sung. And that is the same decision which we have been following, which has been reaffirmed by the Congress Working Committee, and that is what we will be following across the country.
7: My point of view hai ki yahan pe kafi religion ke log rehte hain, mazhab ke log rehte hain, jo ek god mein vishwas karte hain, single god, not many gods. Aur Vande Mataram ke ek jo stanza hai वो वंदना करते हैं मैनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू टैंसा इज वेरी गुड।
8: कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी, और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी, और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधारकर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है, और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की

0: matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
2: I'm in Ahmedabad's gift city today. This is Prime Minister Narendra Modi's dream of building an international financial center. Now think we're reaching a point where the international financial operators are the ones chasing gift city.
3: Began, there were just about 100 registrations. Today, it's close to 1,250.
2: Always be that tension between your aspiration for GIFT City and the reality of Gujarat being a dry state.
3: Within the regulatory framework, everything what would be available outside the state is available.
2: I've been seeing that Edelweiss has been doing a lot of work in and around the GIFT City.
4: I think it's like making an investment in the MF business of 20 years ago.
2: Okay.
4: And hopefully 20 years later, we can say GIFT is what mutual fund is today.
2: How has customer adoption been and how are these products which you're operating out of GIFT faring versus what you do outside?
4: We want this to be a destination for NRIs coming into India via multi-manager. We are also enabling something else, Indians investing abroad.
1: Meetha. या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज अ न्यू नेपाल न्यू पॉसिबिलिटीज अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर रीजनल कोऑपरेशन एनडीटीवी वर्ल्ड ब्रिंग्स टुगेदर द वॉइसेस डिफाइनिंग द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशंस Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanna, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, Actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, Commerce, Security, Infrastructure, Tourism, Soft Power, NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. New rules of engagement.
5: Welcome back, my name is Reef Korsani, you're watching NDTV. Well, a four-year-old shouldn't have to defend her identity, but Tinkle did. After being called Chinese, this little girl from Itanagar had just one message and I quote, Hum log Indian hai. NDTV's managing editor Shivarur has spoken to Tinkle and her family about the incident and why no child should have to ever explain where they belong from. Listen into the conversation.
6: A four-year-old Tinkle from Arunachal Pradesh has gone super viral. She's got the entire country in tears, cooing with affection over her video where she with a very, very serious face says, don't call me Chinese, I am Indian. She has won hearts everywhere in the country and I am so honored, so happy to be joined today by little Tinkle or Tinkle ki ma Ayum is also with us. Ayum ji, pranam. Tinkle ka video itna viral ho gaya hai, to mera pehla sawal Tinkle se hi hai. Tinkle, आपने देखा आपका वीडियो इतना वायरल हो गया है इंडिया में आपने देखा वो उस वीडियो में आप क्या बोल रहे हैं टिंकल
7: क्या बोला था बोल दो क्या मैं क्या बोला था
8: भैया हमको एक भैया हमको चाइनीज दे रहे हैं
6: कौन बोल रहा है आपको चाइनीज आप तो इंडियन है कौन बोल रहा है आपको चाइनीज
8: ए भैया
6: नहीं नहीं आप तो बिल्कुल इंडियन हो टिंकल आप तो हमारे जैसे हैं इंडियन
8: हम इंडियन
6: आयुम जी ये आइडिया कहां से आया टिंकल ने ये वीडियो कैसे बनाया क्यों बनाया उनकी उसके मन में क्यों था ये
7: वो हमको भी इतना आइडिया नहीं था तो टिंकल का एक वीडियो था आइसक्रीम खाने वाला वीडियो जो तो वो आइसक्रीम वीडियो में टिंकल जो हिंदी बोला था तो एक आदमी जो टिंकल को कमेंट किया है ये चाइनीज बच्चा क्यों हिंदी बोल रहा है बोल के तो टिंकल को दुखी हो गया तो टिंकल ने वीडियो बना लिया
6: टिंकल आपको बुरा लगा ये कमेंट पढ़कर इंस्टाग्राम में? आपको बुरा लगा?
7: आपको आदमी शैलेश बोला था, बच्चा लगा ना बुरा लगा?
8: बुरा लगा
6: नहीं, मुझे भी बुरा लगता अगर ऐसे कोई कमेंट करता तो। और टिंकल हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें आप नेशनल एंथम गाते हैं, आप सल्यूट करते हैं, आप तिरंगा को सल्यूट करते हैं, तो आप काफी देश प्रेमी हैं। इंडिया को बहुत प्यार करते हैं आप टिंकल? और टिंकल आपके पापा पुलिस में हैं, है ना?
8: मेरा वो पुलिस बनते
6: हैं। तो आपके पापा यूनिफॉर्म में होते हैं, हमने देखा है आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर यूनिफॉर्म पहनते हुए, और आपका भी एक यूनिफॉर्म में एक वीडियो है तिरंगा को सल्यूट करते हुए। एक बार हमारे लिए, देश के लिए नेशनल एंथम गाओ टिंकल, अगर आप कर सकते हो तो नेशनल एंथम हम सुनना चाहेंगे आपसे। यस, स्टैंडिंग।
7: जी, हम गाऊंगा।

0: सल्यूट टू यू ट्विंकल, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमको, सबने सुना आपको एनडीटीवी पर और देश में, और हम बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं आपको। नमस्ते ट्विंकल, नमस्ते आयुम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, जय हिंद।
1: थैंक यू, थैंक यू,
2: बाय बाय।
3: वेलकम बैक, शॉर्ट ब्रेक, मोर न्यूज एंड अपडेट्स ऑन द अदर साइड, स्टे ऑन विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट।
4: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना।
5: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
6: So many payment apps, but which one is safe?
7: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable, and you keep getting rewards as well. You can also get 20 rupees cash back on your first payment above 20 rupees. Use Bheem app to pay.
8: It's the Mahi way.
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a cool

0: All right, we begin with the latest we're tracking at the moment. As you know, veteran actress Sharmila Tagore has backed the first two stanzas of singing the Vande Mataram and says that India's diversity makes the other stanzas difficult for some faiths. She's actually called the first two stanzas very good, but Kangana Ranaut has now reacted. Kangana Ranaut is framing this in a slightly different way, but before that, listen in to what the veteran actress has said.
1: पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफ़ी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मैनी गॉड्स. और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मैनी गॉड्स. आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें All the gods are mentioned by name. तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है. तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं

0: सल्यूट टू यू ट्विंकल, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा हमको, सबने सुना आपको NDTV पर और देश में, और हम बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं आपको। नमस्ते ट्विंकल, नमस्ते आयुम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, जय हिंद।
1: थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।
2: Well, on that note, we're slipping into a very quick break. Do stay tuned to the NDTV network this Friday morning. We've got the latest updates lined up for you in a moment.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
6: अरे मेरे राजा।

रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।

आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे, मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: दिल्ली के विकास में जो उनका योगदान रहा है वो आज तक याद किया जाता है, उसके उदाहरण दिए जाते हैं और उनके जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है।
1: देखो ये सज्जन कुमार दे दा ना सिख इतिहास से काले अखरा दा नाम लिखा गया, एदी मौत तब फांसी दे नाल होनी सी, कीते दी सजा इनू मिलनी सी।
2: Mohammad Ghazali has been tracking the latest details and the reactions that have followed since Dipinder Hooda's statement. Politically, Ghazali, tell us, does this put the Congress in a difficult position? Also, has the party distanced itself from Dipinder Hooda's remarks yet?
3: See, whenever issues concerning 1984 Operation Blue Star or those convicted or accused of riots in 1984 back in Delhi, these issues come up, the Punjab unit of Congress sort of acts differently. So you can see Dipinder Hooda, he's from Haryana, he has paid his condolences. There are other Congress leaders from center, like he also happens to be from Haryana, Mr. Randeep Surjewala. He has also put out a condolence tweet. And now this is bound to sort of reverberate in Punjab. It's poll time as well. So certainly any Congress leader or what sort of reaction the high command gives on the passing away of Sajjan Kumar will certainly invite a lot of sharp criticism from other parties in Punjab. And rightly so, the Akali Dal has led that attack by attacking the Congress leaders who are paying sort of tributes or even showing condolences messages for Mr. Sajjan Kumar, because it's a politically charged environment. And it is very likely that not just the Aam Aadmi Party or the Akali Dal, even BJP will certainly attack the Congress for showing any kind of respect for a convicted person who has died in prison.
2: Right. The BJP has consistently invoked the 1984 riots as an issue of accountability. We will, of course, track the BJP's reaction too. But have there been any other political reactions yet besides the Shiromani Akali Dal regarding the matter, Ghazali?
3: See, as of now, it has been only Shiromani Akali Dal. Even yesterday when the news broke, the first reaction came from an ex-MLA of Akali Dal, Mr. Virsa Singh Valtoha. He put out a social media post saying that how the convicted accused of the riot, of the Sikh riots in Delhi, has passed away just behind the prisons, is staying behind the prison. So sharp reactions are likely to come from other political leaders.
2: As always, Ghazali, thanks so much for joining us with the latest that's transpiring in Punjab. All right, you know, this morning, Vande Mataram has once again become the center of a political confrontation. The BJP has accused the Congress of insulting the national song after the Congress Working Committee decided that the party events will continue the practice of singing only the first two stanzas. It's a position that it says dates back to a 1937 Congress resolution. But Home Minister Amit Shah has called the decision anti-national and linked it to what he describes as the politics of appeasement. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has explicitly accused the Congress, meanwhile, of pruning the national song for vote bank politics. The Congress is rejecting that charge, arguing that this is a decades-old convention endorsed by leaders, which includes Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, and says the BJP is manufacturing a controversy to shift the political conversation. You must note that this is unfolding even as the centre launches a nationwide university outreach program where the full rendition of Vande Mataram will be played as ministers fan out across university campuses.
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अंदर छुपा हुआ जिन्नाई जो जिन्न था वो निकला है. इनकी जो मुस्लिम लीगी सोच रही है वो अब उसका खुलासा हो गया है. संविधान हाथ में लेने से संविधान का सम्मान नहीं होता, संविधान को जिया जाता है. और जब एक संवैधानिक व्यवस्था बन गई, संसद के दोनों सदस्य सदन ने इसको पास कर दिया कि हमको जो छूटे हुए स्टैंजा थे वो भी गाने हैं, तो पूरे को गाया जाएगा. और कांग्रेस के खुद अधिवेशनों में पूरा गाया जाता रहा.
5: कांग्रेस पीपल ऑलवेज गोज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, गोज अगेंस्ट द पार्लियामेंट डिसीजंस एंड इन देयर प्रेजेंस ओनली. पार्लियामेंट रिसेंटली पार्लियामेंट सेशन the government has passed the bill, important bill regarding Vande Bharata. Full stanza has to be singing and it is adopted by the parliament, and our honorable president also consented for that. Now it has become the act. It is a compulsory Vande Bharata singing. It is a Rashtra Gita and all full stangas have to be singing. And now their condition is that only two slangas they are going to sing.
6: 1937 में तो आपने सांप्रदायिकता के मुगाम्बो जिन्ना को खुश करने के लिए वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए थे, तो आपको एक मौका मिला था जिसको आप करेक्ट कर देते। अभी संसद ने जो है वो वंदे मातरम को संपूर्णता के साथ स्वीकार किया, आप उसे सम्मान देते, अभी भी आप उसके अपमान में लगे हुए हैं।
7: 1937 के अधिवेशन में जब इसको शामिल किया गया, ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर शामिल किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको चिट्ठी लिखकर सलाह मांगी और उन्होंने सलाह के ऊपर इसको शामिल कराया और उन्होंने ही उसमें से जितना पार्ट था वो तय किया था। सरदार पटेल भी उस अधिवेशन में थे, तो उनके बारे में इनकी क्या राय है? चूँकि बाकी लोगों के बारे में तो ये बोलते रहते हैं, उनके बारे में बताएं क्या राय है। हम तो अपने पुरखों की विरासत को लेकर चल रहे हैं, इनको तो नया नया प्रेम जागा है। और जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे उस समय।
8: कांग्रेस से 1937 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे तमाम लोग मौजूद थे और जिन्होंने ये तय किया था कि सिर्फ दो स्टेंजा ही पढ़ा जाएगा उसका। तो इसलिए उस ये हम लोग ने तय किया कल वर्किंग कमेटी में, कांग्रेस अपने कार्यक्रम में जो परंपरा हमारी चली आ रही है 90 सालों से, हम उस परंपरा के अनुसार हम इस गीत को गाएंगे।
9: हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम गाते गाते दम तोड़ दिए थे, आप लोग कहाँ थे? इतने साल आप लोग भी यही गाना गाए थे, 12 साल से आप हुकूमत में बैठे, आपने भी यही गाना गाए थे, रातों रात आप याद आ गए। जो आदमी लोग पार्लियामेंट में आ नहीं सकते, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे सकते, बच्चों पर आपकी ताकत लाद के आप उनको पिटवाते हैं, आप हमें समझा रहे हैं कि हम क्या चीज है।
10: कांग्रेस पार्टी सिंस 1937 has the same thoughts, same decision on regarding Vande Mataram. That is, in 1937, Calcutta session, Congress Working Committee decided that to attended and participated, discussed by Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Ravindranath Tagore, the illuminaries of Congress Party sat together and decided that first two stanzas of Vande Mataram will be sung. And that is the same decision which we have been following, which has been reaffirmed by the Congress Working Committee, and that is what we will be following across the country.
2: Well, Amit Shah launched a sharp attack on the Congress, alleging that its decision to render only the first two stanzas of Vande Mataram reflected appeasement politics, disrespected martyrs, and undermined national unity. Let's just listen in to what the Union Home Minister had said about the Vande Mataram row just yesterday.
11: कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको

वक्त रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
2: अरे मेरे राजा.

रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।

0: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न इंडिया इज चेजिंग गियर्स फास्टर बोल्डर मोर रेस्टलेस इट डजंट स्टॉप Neither do we. NDTV, when it really matters. Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
1: While tracking more updates coming in at this hour, a video of a tourist confronting security personnel at a checkpoint in Kargil has now gone viral. The woman was left waiting near the Minimark checkpost in Dras after local police stopped the travel on Minimark Zorjila Sonmark Road. The holdup was due to travel restrictions in place on that stretch. And in that video, she can be heard arguing with the army personnel, saying, and I quote, that we are Gen Z, we will not tolerate this, telling them your salary comes from our taxes. The video has now received massive backlash online. Take a look.
2: आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो
3: चलो,
2: कैसे रुकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ियों, चलो।
3: वो कश्मीर एयरपोर्ट नहीं उतरे हो?
2: हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? हाँ। ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, आपको अपना नाम भी नहीं बताया और वहाँ चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है, यहाँ पर यहाँ से कोई नहीं हिलेगा।
3: आपको आपने उकसाया था?
2: ओके, हाँ मैं ठीक हूँ। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आपका जो भी हुआ था, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना।
1: Well, that was the video, and NDTV's managing editor Shiv Varur has now spoken to Captain Yashika H. Tyagi, the former army officer and Kargil war veteran, to get more perspective on this very video. Listen into what she had to say.
4: What goes through your mind when you see this video? I'm sure you've already seen it. I have detailed the reasons why it displays a complete sense of entitlement and ignorance. But as someone who has literally defended the country in areas like this, what goes through your mind when you see someone, we say we are Gen

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cash back of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
0: जानते हैं मैं Elite Matrimony क्यों recommend करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: story. And the political row over Vande Mataram is only intensifying further, with the Congress and the BJP locked in a war of words. Congress's decision to sing only the first two stanzas at its events has drawn sharp BJP criticism. Home Minister Amit Shah called it anti-national. Congress leaders are defending this move, citing the 1937 resolution. Karnataka Home Minister Priyank Kharge said that in 1937, Gandhiji, Patelji, Nehruji, Netaji Bose and Tagore deliberated on which portions of Vande Mataram should be sung publicly and why. Meanwhile, the Modi government is taking the full rendition to the university campuses. And as part of the Gen Z outreach, a minister will visit the university every day under the One Day, One University initiative of the BJP government. Full Vande Mataram will play at these programs.
1: इसके वरिष्ठ नेताओं के अंदर छुपा हुआ जिन्नाई जो जिन्न था वो निकला है. इनकी जो मुस्लिम लीग की सोच रही है वो अब उसका खुलासा हो गया है. संविधान हाथ में लेने से संविधान का सम्मान नहीं होता, संविधान को जिया जाता है. और जब एक संवैधानिक व्यवस्था बन गई, संसद के दोनों सदस्य सदन ने इसको पास कर दिया कि हमको जो छूटे हुए स्टैंजा थे वो भी गाने हैं, तो पूरे को गाया जाएगा. और कांग्रेस के खुद अधिवेशनों में पूरा गाया जाता रहा.
2: कांग्रेस पीपल ऑलवेज गोज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, गोज अगेंस्ट द पार्लियामेंट डिसीजंस एंड इन देयर प्रेजेंस ओनली. Parliament recently, Parliament session, the government has passed the bill, important bill regarding Vande Bharata. Full stanza has to be singing, and it is adopted by the Parliament. And our Honorable President also consented for that. Now it has become the act. It is a compulsory Vande Bharata singing. It is a Rashtra Gita. And all full stangas have to be singing. And now their condition is that only two stangas they are going to sing.
3: 1937 में तो आपने सांप्रदायिकता के मुगाम्बो जिन्ना को खुश करने के लिए वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए थे, तो आपको एक मौका मिला था जिसको आप करेक्ट कर देते. अभी संसद ने जो है वो वंदे मातरम को संपूर्णता के साथ स्वीकार किया, आप उसे सम्मान देते. अभी भी आप उसके अपमान में लगे हुए हैं.
4: 1937 के अधिवेशन में जब इसको शामिल किया गया, ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर शामिल किया गया. सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको चिट्ठी लिखकर सलाह मांगी और उन्होंने सलाह के ऊपर इसको शामिल कराया और उन्होंने ही उसमें से जितना पार्ट था वो तय किया था. सरदार पटेल भी उस अधिवेशन में थे, तो उनके बारे में इनकी क्या राय है? चूँकि बाकी लोगों के बारे में तो ये बोलते रहते हैं, उनके बारे में बताएं क्या राय है. हम तो अपने पुरखों की विरासत को लेकर चल रहे हैं, इनको तो नया नया प्रेम जागा है. और जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे उस समय.
5: कांग्रेस से 1937 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे तमाम लोग मौजूद थे और जिन्होंने ये तय किया था कि सिर्फ दो स्टेंजा ही पढ़ा जाएगा उसका. तो इसलिए उस ये हम लोग ने तय किया कल वर्किंग कमेटी में कि कांग्रेस अपने कार्यक्रम में जो परंपरा हमारी चली आ रही है 90 सालों से, हम उस परंपरा के अनुसार हम इस गीत को गाएंगे.
6: हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम गाते गाते दम तोड़ दिए थे. आप लोग कहाँ थे? इतने साल आप लोग भी यही गाना गाए थे. 12 साल से आप हुकूमत में बैठे, आपने भी यही गाना गाए थे. रातों रात आप याद आ गए. जो आदमी लोग पार्लियामेंट में आ नहीं सकते, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे सकते, बच्चों पर आपकी ताकत लाद के आप उनको पिटवाते हैं, आप हमें समझा रहे हैं कि हम क्या चीज़ है.
7: कांग्रेस पार्टी सिंस 1937 has the same thoughts, same decision on regarding Vande Mataram. That is, in 1937, Calcutta session, Congress Working Committee decided that too attended and participated, discussed by Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Ravindranath Tagore, the illuminaries of Congress Party sat together and decided that first two stanzas of Vande Mataram will be sung. And that is the same decision which we have been following, which has been reaffirmed by the Congress Working Committee, and that is what we will be following across the country.
0: Now, meanwhile, Home Minister Amit Shah launched a sharp attack on the Congress, alleging that its decision to render only the first two stanzas of Vande Mataram reflected appeasement politics, disrespected martyrs, and undermined national unity. Let's listen into what the Union Home Minister had to say on the Vande Mataram row yesterday.
8: कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम एपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है।
0: Now, amid fierce political contest over Vande Mataram, veteran actor Sharmila Tagore weighed in, saying she supports singing the first two stanzas of the Vande Mataram. Her argument is that while those opening verses are inclusive and capable of bringing together people of all the faiths, the later stanzas with their religious imagery may not be equally acceptable to everyone in a country as diverse as India. However, actor and BJP MP Kangana Ranaut has now responded, saying Sharmila Tagore's understanding of art and poetry is limiting. Kangana argues that Vande Mataram is inseparable from India's freedom struggle and should be viewed as a unifying national symbol.
9: यहाँ पे काफी religion के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, जो एक God में विश्वास करते हैं, single God, not many gods. और Vande Mataram के जो stanza है, वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स, आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू टाइम्स इज वेरी गुड।
0: And there's more breaking news coming in from the south of the country. Fresh political face-off between Udayanidhi Stalin and Vijay. Udayanidhi Stalin flags cars for the MLA's announcement and says that the TN already faces financial burden. DMK 59 MLAs will not accept these vehicles. Remember, there's been a controversy over the vehicles that have been given to all the MLAs, and there is huge controversy brewing on this entire matter. Udayanidhi Stalin says don't need cars for the DMK MLAs, and certainly they will. That's the stand that the DMK party has taken. And now Vijay is joining us on this big development to discuss and give us more details on what has transpired and the stand that has been taken by the DMK on this entire matter. Vijay, what's the latest that you're picking up?
10: Aditya, that's right. Under 110 rule in Legislative Assembly, Chief Minister C. Joseph Vijay made important announcement announcing vehicles, four-wheeler vehicles, cars for elected MLAs, newly elected MLAs in the Legislative Assembly for the purpose of to do their jobs in their constituencies. Actually, it was demanded by one of VCK MLA Jyothimani during the Assembly session. Then Chief Minister and other ministers had a discussion on it. Even officials were part of the discussion. And then day before yesterday, the announcement was made in the Legislative Assembly. Now DMK has come up with a statement. Leader of opposition Udayanidhi Stalin inside the Legislative Assembly announced that already CM Joseph Vijay has already on the various occasion mentioned that TN Tamil Nadu financial situation is under burden. They are facing struggle. So now DMK's MLAs, no DMK's MLAs will accept those cars. They don't need that car. He has provided the letter of request to the speaker to ask the speaker to submit to the chief minister office also. This was made by Udayanidhi Stalin, in announcement made by Udayanidhi Stalin inside the Legislative Assembly, for which Minister Adav Arjuna gave clarification. Even TVK stands remains same. If TVK MLAs any MLAs has number of cars, three or four cars, they don't need naturally they don't need another car, another new car. They won't ask for other new car. This was announcement made for MLAs who doesn't have a car, so naturally they will follow this is simple protocol. If anyone doesn't wish to do politics in it, they won't raise unnecessary issues inside Legislative Assembly. This was told by Minister Adav Arjuna.
0: All right, DMK has taken a stance on this entire development, saying that already Tamil Nadu faces a financial burden, then the DMK will not take these cars that have been announced by the TVK government under the new car scheme for the MLAs. But could you explain again, Vijay, the stance taken by the TVK? They have not stopped this scheme entirely. They've only said that it's a matter of protocol, and those who need it will be given, and those who already have several cars will not add another car in their entire tally.
10: That's right, but Chief Minister, while announcing, he just made an announcement, all MLAs will get a new car to do their duties in the respective constituency. But however, now after leader of opposition Udayanidhi Stalin announced that DMK's 59 MLAs will not accept those cars, citing that they have already cars, and also considering the financial situation of Tamil Nadu. Now, Minister Adav Arjuna also gave clarification, saying that as TVK MLAs also, if TVK MLAs has many number of cars, they won't naturally they won't be necessary to accept another car. So whichever MLA needs any car, they will be provided with a vehicle facility. This was the clarification given by Minister Adav Arjuna, Aditya.
0: All right, Vijay, getting us the latest on this big political debate transpiring in Tamil Nadu. Thank you very much for joining us. And it's time to slip into a short break here on NDTV. Stay tuned to NDTV, because when it matters, it's always NDTV.

0: Rahul Gandhi as well. And it is now Congress supporters who are getting this information of Rahul Gandhi staging a dharna outside the DC's office here at Parliament Street. They are arriving over here in large numbers as well. Let me also show you these visuals from outside the DCP's office. Now, police barricading is on. Looking at the situation, leader of opposition Rahul Gandhi holds massive security for himself. Being made by the
1: other individuals can enter the DCP office apart from media and the concerned police officials. This is the Parliament Street police station where Rahul Gandhi entered just 30 to 40 minutes back, along with his colleagues from the Congress party. The DCP, I must tell you, the DCP over here, Mr. Sachin, who tried to again connect with leader of opposition Rahul Gandhi.
2: Right, I'm going to come back to you in a moment from now. We have Ms. Kiran Bedi also joined me on the phone line. Ms. Bedi, the claim being made by the complainant and through the sources within the Congress party is a delay in filing the FIR. What can you tell us about this in terms of why such a delay takes place? If it does, we know that there's a Supreme Court monitored probe also into the incident. But the claim here by the complainant, by the Congress, is that a case is not being registered.
3: Police need not delay it. They should take the complaint, register it as an FIR, give them a copy and let them go home.
2: But that's the problem, ma'am. That's what they're saying is not happening on the ground.
3: Well, I think they need not create this as a problem. This is not a problem at all. FIR can be registered on their complaint and thereafter the investigations can be taken up. But also similar information can be passed on to the Honorable Committee, which is also looking into all these aspects and take a prosecutor's opinion, what it wishes to do with it. So I don't see this as a big issue.
2: Ms. Bedi, a quick question before I let you go. Is this also perhaps damaging in terms of the perception when it comes to the Delhi police, when there are claims that there's been a delay in the FIR, given that you're saying that a copy should be shared with the complainant, and which is not happening on the ground, and this is as per the Congress and the complainant, and given that they have been also refuting allegations of the pellet gun being used against protesters, could this be damaging in terms of the perception here for the Delhi police?
3: Why is there a delay? How long the delay? I have no idea. I'm not watching the television. I'm only answering to your basic oral question on my phone, saying that this is a complaint. Why could the police not register? I said, yes, police can register an FIR. And then after that, take up the matter, take the opinion of the prosecutor now that a matter is before the Honorable Supreme Court committee.
2: A lot of people assemble outside the Parliament Street police station from the Congress. There are supporters. You have Congress leaders there as well. Could this also be worrisome in the sense, could there be action that the police could legally take to remove these people from outside or rather within the premises of the police station?
3: Well, if they create a law and order issue, or they become a non-lawful assembly, then the police is within the duties and responsibilities to do what it needs to be done at that moment. As long as they're insisting on an FIR to be registered, I think the police need not delay it. Register it as an FIR. Give them a copy of the FIR and let them go home.
2: All right, Ms. Bedi, thank you so much for joining us on the phone line there. Kiran Bedi there talking about how it shouldn't be a problem to register the FIR and also stating that unless there's a law and order situation, there would be no need or any reason to move those supporters outside the premises of the police station of the DCP office there. Aishwarya, back with us. Aishwarya, are we expecting a press conference from Rahul Gandhi? What's happening on the ground? Is the dharna still on?
0: Gandhi is continuing with his dharna that he is staging outside the DCP's office along with the senior other Congress leaders as well. There are a few MPs who have just arrived as well to support Mr. Rahul Gandhi, who is staging a dharna just outside the DCP's office. And let me quickly show you this visual from behind. As far as Rahul Gandhi is sitting outside with the members, Mr. Sahil Aishwarya,
2: I'm going to come back to you in a moment from now. Congress's Mr. Imran Pratap Gadi now joins me on the phone line. Sir, we're seeing a lot of Congress leaders at the Parliament Street Police Station. Can you tell us what the demand is from the Congress?
4: देखिए पैलेट गन का जो विक्टिम है हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पीटा गया बिना किसी वजह के पीटा गया उनको चोटें हैं अगर उनकी एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है उनकी कंप्लेंट नहीं दर्ज की जा रही है तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले दिन से छात्रों के साथ खड़े हैं छात्रों की गूंज अभियान राहुल गांधी जी ने शुरू किया और उसके बाद पैलेट गन के पहले विक्टिम को देश के सामने लाने का श्रेय राहुल गांधी जी को है वरना तो पुलिस नकार रही थी कि पैलेट गन चली ही नहीं इनके सारे मिनिस्टर्स नकार रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है पैलेट गन चली ही नहीं जब राहुल जी ने पीसी करके 10 जनपद के सामने देश को बताया कि ये पैलेट गन का विक्टिम है और ये इसको चोट लगी है तब जाकर के देश को पता चला और तब पुलिस ने कबूल किया कि हाँ पैलेट गन चली ऐसे में उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी जी थाने पहुंचे हैं और पूरा देश देखे कि सरकार किस तरह छात्रों के खिलाफ है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किस तरह छात्रों के साथ हैं
2: राहुल गांधी 12 बजे से वहां पे है मिस्टर इमरान आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू हाउ लॉन्ग विल दिस धरना कंटिन्यू फॉर
4: ये तो पुलिस को तय करना है कि राहुल गांधी जी को कितनी देर रोक करके रखेंगे राहुल गांधी जी उस विक्टिम के लिए पहुंचे हैं आप उसकी एफआईआर दर्ज करिए राहुल गांधी जी चले आएंगे वापस राहुल गांधी जी वहां धरना देने थोड़ी गए थे आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो वहां बैठे रहे राहुल जी की डिमांड है कि आप इन बच्चों की कंप्लेंट एक्सेप्ट करिए क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है पुलिस
2: मिस्टर इमरान आई ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू दैट देर इज अ सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड रादर हाई पावर्ड कमिटी दैट इज ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटिंग दिस बट वॉट इज योर पार्टी saying or what is your claim in terms of the response by the Delhi police on this FIR which is allegedly not being filed by the Delhi police today?
4: माननीय उच्चतम न्यायालय अपना काम कर रहा है उसने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है ये अच्छी बात है अच्छा कदम है लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन की अपनी जिम्मेदारियां हैं वो अपना रोल अदा कर रहे हैं वो लगातार पहले दिन से स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं जब पूरी देश की सरकार पूरा सोशल मीडिया उनका ट्रोल आर्मी पूरी उनकी आईटी सेल स्टूडेंट्स को बिल्कुल आतंकवादियों की तरह ट्रीट कर रही थी जब पुलिस जो है वो मेल पुलिस वाले लड़कियों को जो गर्ल्स स्टूडेंट थी उनको थप्पड़ मार रहे थे उनको उनके प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसाने की कोशिश कर रहे थे ऐसे समय में भी राहुल गांधी स्टूडेंट्स के साथ खड़े थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर खड़े थे पार्लियामेंट के अंदर खड़े थे सड़क पर खड़े थे कोटा में खड़े थे देहरादून में खड़े थे इलाहाबाद में खड़े थे और कल पुणे में खड़े रहेंगे तो राहुल गांधी जी अपना फर्ज निभा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष होने का और मुझे लगता है अपोजिशन के हर नेता को इस समय स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना चाहिए
2: मेरा प्रश्न ये भी है दैट व्हाट इज द दिल्ली पुलिस क्लेमिंग व्हाई आर दे फाइलिंग दिस एफआईआर व्हाई आर दे रजिस्टरिंग इट
4: ये तो आपको ये सवाल हमसे नहीं पूछना चाहिए ये तो आपको दिल्ली पुलिस से सवाल पूछना चाहिए
2: लेकिन आपके पार्टी लीडर्स हैं वहां पे इसलिए मैं पूछ रही हूँ
4: नहीं वो सवाल आप उन्हीं से पूछिए हम अपना काम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस का जो काम है दिल्ली पुलिस को करना चाहिए आपको कंप्लेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए जब पीड़ित लड़का साथ में है वो कह रहा है कि हमें चोट लगी हमें पैलेट गन लगी है आप एक्सेप्ट करिए हमारी कंप्लेंट तो अब तो दिल्ली पुलिस को तय करना है सरकार को तय करना है कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे तो राहुल गांधी जी लगातार स्टूडेंट के साथ खड़े हैं खड़े रहेंगे आप धरने के लिए मजबूर करेंगे तो धरना देंगे आप एक्सेप्ट कर लेंगे राहुल जी वापस आ जाएंगे
2: ऑल राइट मिस्टर प्रताप गड़ी थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस हियर ऑन एनडीटीवी गोइंग बैक टू ऐश्वर्या हु इज ऑन द ग्राउंड देयर एट द पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन व्हाट इज द क्लेम बीइंग मेड बाय द दिल्ली पुलिस एट दिस पॉइंट व्हाई द डिले As the Congress is claiming there has been one, the complainant is claiming there has been one in registering this case. Aishwarya.
0: The Delhi police have told Rahul Gandhi, as per our sources, that there is already a high-powered committee that has been constituted by the Supreme Court who's investigating into the cases that were registered during the July 28th students' protest. Anushka is also with us, who covers crime for us. Anushka, please tell us why there is so delay. Is Rahul Gandhi adamant? And what is Delhi police stating to Rahul Gandhi about not registering this?
5: Well, that's right, Aishwarya. We have seen that the DCP of Parliament Street, Sachin Sharma, has, in conversation with Rahul Gandhi, said that the complaint has been received today by the Delhi police and it will be given to the crime
2: branch. Coming back to you in a moment from now, more reactions coming in. Ms. Anila Singh now joins me on the phone line. How do you react to what we're seeing on our screen, Ms. Singh? You have Rahul Gandhi, his team, and a complainant at the Parliament Street police station demanding that an FIR be registered.
6: Hi, Ramnav to all, and I think the dramatics which Mr. Gandhi is doing right now is not acceptable from LOP. He is trying to behave as if he is some college student leader, and when the police personnel have said that we are going to take right actions, do not worry, why he is not understanding such simple things? Why he wants to create dramatics? Why?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Welcome, you're watching NDTV. I'm Gargi Rawat, and the big story we're tracking at this hour, a showdown in central Delhi as Rahul Gandhi is sitting on a dharna outside a police station along with the pellet gun victim, claiming no FIR has been registered. He's demanding that FIR. Also, other top Congress leaders are joining him on this dharna. We'll get you all the details. First, a look at the headlines we're tracking. Showdown over pellet use at students' protest. Rahul Gandhi at the Parliament Street DCP office seeks FIR for the pellet victim. Sits on a dharna along with the victim and other top Congress leaders at the police station. A war of words erupts in the Tamil Nadu Assembly. Udayanidhi and Adhav Arjuna clash over Vijay's will open files remark. The Leader of Opposition, Udaya, mocks TVK, asks if Vijay is waiting for his astrologer, while Adhav hits back, says they are not afraid of anyone. The Vande Mataram controversy now in Bollywood, with veteran actor Sharmila Tagore supporting the first two stanzas. Stan says the first two stanzas are good. BJP MP Kangana slams her, says Vande Mataram is the essence of India's freedom. Hyderabad's deadly Aston Martin crash. The son of Rajya Sabha MP Lingamaneni Ramesh has been booked after a 26-year-old woman was killed. The police say the 21-year-old was driving at high speed and rashly. The MP's son, apprehended by the locals on the spot, released on bail after medical tests. An FIR is finally registered against the teacher in Vishakhapatnam school. This shocker from the school after a 6-year-old child, Pranay, was scolded, threatened with disrobing and then slapped. He collapsed and died on the spot. The probe is on. Postmortem report awaited. The parents demand justice. And Pakistan's former Prime Minister Imran Khan has been moved back to Adiyala jail from the Shifa International Hospital in Islamabad. Khan underwent a medical checkup at the hospital and was sent back to prison after doctors deemed it safe for him to remain in custody. Well, let's now go straight away across to where Rahul Gandhi is speaking to the media. Let's listen in.
1: देखिए 14 तारीख को भैया शांत हो जाएं 14 तारीख को यहां पे कनॉट प्लेस में
2: माइक तो माइक
1: 14 तारीख को यहां पे भैया शांत हो जाएं फिर मैं कहां बैठ जाता
2: हूं बोलिए बैठ जाओ फिर बोलिए
1: थोड़ा सा हो गया आप यहां शांत हो जाइए
3: भैया चुप हो
1: जाओ 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ उसका सबूत क्या है 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ उसका सबूत क्या है सबूत यह है देखिए यह है पैलेट्स देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए ये देखिए ये है पैलेट्स ये कहां से आए ये इनके शरीर से आए दिखाओ ये इनके यहां लगे छर्रे 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है तीन छर्रे इनके आंख में है वो फाइल दिखाओ
2: अरे स्टिल
1: ये
2: अरे भाई गर्दन चाहिए
1: ये है एम्स की रिपोर्ट
2: अरे नहीं कटाई कर
1: दे मेरी हार्डन की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं आंख में तीन छर्रे हैं आंख इनकी खो गई है उन उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए तो एक ही सवाल है अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज कीजिए, FIR दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक हैं, साहिल हैं ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए। जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, FIR नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक FIR नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, FIR करना होगा। इस देश में के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है जिनका रेप किया जाता है, उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है, और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, FIR, DDR और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं, और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर है, दो मिनट आप आइए बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं?
4: 13 अगस्त
1: से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए, हमें वहाँ से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए।
4: 14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस, दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए, हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहाँ गए। वहाँ वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे, द मोमेंट दे रेड द टिकट उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफी देर कि SHO साहब आ रहे हैं, SHO साहब आ रहे हैं। SHO साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पर बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप DCP क्राइम ब्रांच आदिपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ,
1: और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं ऊपर से ऑर्डर आया है।
4: और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी DD नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी FIR है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है DCP क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे DCP क्राइम ब्रांच गए, वहाँ ACP उमेश भारद्वाज से भी मिले, उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन, एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम विच इज द पुलिस स्टेशन। तो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है, FIR तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट LOP के आने के बाद कंप्लेंट पे बस टप्पा लगा, रिसीविंग मिला, FIR अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड, वी हैव एन MLC कॉपी ऑफ लेडी हार्डिंग विच सेज पंक्चर्ड वुंड्स एंड ओजिंग ब्लड ओजिंग आउट। ये MLC मैंने नहीं बनाई है, लेडी हार्डिंग ने बनाई है, विच सेज दैट देयर आर पंक्चर्ड वुंड्स।
1: I'll read it out. History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 27-26 at about 3 PM, following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे details दिए हैं, और यहाँ लिखा है multiple puncture wounds of size varying from 0.5 cm to 0.8 cm, present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood. is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में तीन है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ FIR मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। DTR, FIR और आयोग की रिपोर्ट। ज्योति जी, आप थोड़ा बताइए इनको, आपका एक्सपीरियंस। आइए, ये इनकी मदर है ज्योति जी, इनका सुनिए जरा।
5: दादा पीछे कर लो यार, पूरा फ्रेम में आ रहा है
6: आपका। चौदह अगस्त को
7: कैमरा घुसाने क्या जाने का लोग यार, जूमे कटे कर
6: दिया। उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जाइए, उसके पास ही जो दूसरा थाना है। फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे दो तीन घंटे बिठाया हंडाया, कुछ नहीं
7: किया।
6: वहाँ पे भी मैम गई थी, वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से लिख के आएगा जब हम
8: करेंगे। We posted email, DCP Crime Branch, DCP Delhi Police, DCP, sorry, SHO, cannot place. We people posted email, everything. We have a report of everything. And still they didn't even give us an acknowledgement number. Today the LOP had to come personally to get us one thapa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last 10 days.
6: ये तो बोल रहे हैं कि चली नहीं है, तो ये कहाँ से करेंगे? तो मना कर रहे हैं।

रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू

0: संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश
1: की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हट योग को दर्शाता है और हट योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। इस पूरे ड्रामे में और इस पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीहत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए
2: पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमिटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। तो ये क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में अराजकता की पार्टी बन रही है। कृपया करके न करें, बहस होगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जाके राहुल गांधी एक थाने में बैठ जाएं, वो भी 1 महीना पुराने एक मामले को लेकर जिसकी जांच चल रही है जैसे मैंने बताया, तो स्पष्ट है कि कंपटीशन की पॉलिटिक्स है। यहाँ फिसलते हैं तो वहां खड़े हो जाते हैं, इसकी हम पूरी भर्सना करते हैं।
3: राहुल गांधी जी आए हैं आंदोलन करने के लिए छात्र और छात्राओं के लिए। उनकी तरफ से जो मांगे किए जा रहे हैं कि एफआईआर को दर्ज करना चाहिए, यह मौका नहीं दिया जाता है। पुलिस ने यह तानाशाही की रास्ता अपना रही, इसलिए राहुल गांधी जी के विरोध आंदोलन छिड़े, आंदोलन में साथ देने के लिए आए हैं।
4: I think he's taking his fight further and he has to take his fight to a conclusion. We are all here to support him.
5: They're saying that police is not giving the IO's number, not filing the FIR.
4: We'll go inside and find out what the actual situation is.
6: Rahul Gandhi very well knows that he is not going to get response from the Gen Z and the Gen Next of this country, because the Gen Z and the Gen Next of this country are treading swiftly towards Vikasit Bharat. और शायद इसीलिए एंटी इंडिया गैंग से जो उन्होंने पैसे फंड्स प्राप्त किए हैं उस फंड से लोगों को 25-25 हजार रुपए देकर छात्रों की गूंज इस कार्यक्रम

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: discussion on that account. Prajakta joining us for more on this. Give us more details. What do we know about this meeting that took place between Parth Pawar and Sharad Pawar?
1: As we all know that NCP Sharad Pawar is moving closer to the BJP since past few months. They met by PM Narendra Modi in this month, and yesterday that Parth Pawar went to Silver Oak, that is Sharad Pawar resident in Mumbai, and he met him around, he went there around at 8 PM and he discussed with him around till the 11 PM. That was a 3-hour discussion. That meeting reason is not clear yet, but it is about that speculation and the meeting fuel that the political discussion erupted that the NCP is going to merge in, the two NCP will come together in future, and the NCP Sharad Pawar will join NDA. Gargi.
0: All right, Prajakta, thanks so much for joining us with those details. So definitely speculation once again after that key meeting taking place between Parth Pawar and Sharad Pawar. Well, let's now take you through the political row. Vande Mataram that is simply intensifying with Congress and BJP locked in a war of words. The Congress's decision to sing only the first two stanzas at its events has drawn sharp BJP criticism. Home Minister Amit Shah has slammed the Congress for this decision, while Defence Minister Rajnath Singh has called it a matter of grave constitutional concern. Congress leaders are defending this move, citing the 1937 resolution. Karnataka Home Minister Priyank Kharge said that in 1937, it was then decided by Gandhiji, Patelji, Nehruji, Netaji Bose and Tagore, deliberated on which portions of Vande Mataram should be sung publicly and why. And it was decided at that time that the first two stanzas that were seen to, you know, not offend any sort of community, those two stanzas would be sung. That is what the Congress is saying. And remember, this law was passed just now in the monsoon session that protected the Vande Mataram and said that all six stanzas must be sung. Meanwhile, the Modi government is taking the full rendition to university campuses. Take a look.
2: दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी, वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया. जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते. मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया और ये ऐतिहासिक निर्णय.
3: कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है. भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है. यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है, और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है. वंदे मातरम का विरोध करके कांग्रेस ने अपने नासमझी भरे खतरनाक इरादों को देश के सामने बता दिया है.
4: 1937 के अधिवेशन में जब इसको शामिल किया गया, ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर शामिल किया गया. सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको चिट्ठी लिखकर सलाह मांगी और उन्होंने सलाह के ऊपर इसको शामिल कराया, और उन्होंने ही उसमें से जितना पार्ट था वो तय किया था. सरदार पटेल भी उस अधिवेशन में थे, तो उनके बारे में इनकी क्या राय है? चूँकि बाकी लोगों के बारे में तो ये बोलते रहते हैं, उनके बारे में बताएं क्या राय है. हम तो अपने पुरखों की विरासत को लेकर चल रहे हैं, इनको तो नया नया प्रेम जागा है. और जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे उस समय.
5: कांग्रेस से 1937 में एक रेजोल्यूशन पास

0: हुआ था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे तमाम लोग मौजूद थे और जिन्होंने ये तय किया था कि सिर्फ दो स्टेंजा ही पढ़ा जाएगा उसका। तो इसलिए उस ये हम लोग ने तय किया कल वर्किंग कमेटी में कि कांग्रेस अपने कार्यक्रम में जो परंपरा हमारी चली आ रही है 90 सालों से, हम उस परंपरा के अनुसार हम इस गीत को गाएंगे।
1: हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम गाते गाते दम तोड़ दिए थे, आप लोग कहाँ थे? इतने साल आप लोग भी यही गाना गाए थे, 12 साल से आप हुकूमत में बैठे, आपने भी यही गाना गाए थे, रातों रात आप याद आ गए। जो आदमी लोग पार्लियामेंट में आ नहीं सकते, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे सकते, बच्चों पर आपकी ताकत लाद के आप उनको पिटवाते हैं, आप हमें समझा रहे हैं कि हम क्या चीज़ है।
2: All right, so the Congress, they're hitting back over the Vande Mataram related criticism that they're receiving. With that, we'll slip into a short break. On the other side, find out why Rahul Gandhi is sitting on dharna at a police station.

0: Ahmedabad's gift city today. This is Prime Minister Narendra Modi's dream of building an international financial center. Now I think we're reaching a point where the international financial operators are the ones chasing gift city.
1: Began, there were just about 100 registrations. Today it's close to 1,250.
0: Always be that tension between your aspiration for GIFT City and the reality of Gujarat being a dry state.
1: Within the regulatory framework, everything what would be available outside the state is available.
0: I've been seeing that Edelweiss has been doing a lot of work in and around the GIFT City.
2: I think it's like making an investment in the MF business of 20 years ago.
0: Okay.
2: And hopefully 20 years later, we can say GIFT is what mutual fund is today.
0: How has customer adoption been and how are these products which you're operating out of GIFT faring versus what you do outside?
2: We want this to be a destination for NRIs coming into India via multi-manager. We are also enabling something else, Indians investing abroad.
3: A new Nepal, new possibilities, a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanal, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, commerce, security, infrastructure, tourism, soft power. NDTV Anviksha, ideas across borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
4: So many attacks.
3: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
4: It's incredible.
3: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
4: Welcome to Left, Right, and Center.
3: Hard facts.
4: War struck country.
3: Hard questions.
4: In the Ukraine.
3: 30 years of trust.
5: In the Kargil area.
4: North Ukraine.
0: In France. In Italy.
4: At Srinagar.
0: I am Vikram.
4: Vishnu Shom for NDTV.
3: Vishnu Shom. Only on NDTV.
6: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
7: Launch control, 0 to 100.
8: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
9: This car makes no sense, yet it makes every sense.
10: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
8: Your friend said, "Yeah, Lily." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
11: All right, we begin with the latest we're tracking at the moment. As you know, veteran actress Sharmila Tagore has backed the first two stanzas of singing the Vande Mataram and says that India's diversity makes the other stanzas difficult for some fates. She's actually called the first two stanzas very good, but Kangana Ranaut has now reacted. Kangana Ranaut is framing this in a slightly different way, but before that, listen in to what the veteran actress has said.
12: पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफ़ी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मैनी गॉड्स. और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स, आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम. तो वो जो एक
11: Welcome back. You're watching NDTV Newsroom. Now, a big showdown is underway in central Delhi with Rahul Gandhi sitting outside a police station. This is in Parliament Street where Rahul Gandhi, along with several other leaders, including Priyanka Gandhi Vadra, are sitting outside the DCP office in Parliament Street. He's accused the Delhi police of refusing to register an FIR over the pellet gun injury suffered by student protester Sahil Lochab during the July 20th protest. Rahul says an FIR must be filed, judicial inquiry conducted, action taken against those responsible, and said he will not leave until that FIR is registered. But the BJP has now hit back at Rahul Gandhi, accusing him of disrespecting the rule of law and spreading anarchy, claiming that the Supreme Court has already appointed a committee to look into this aspect of violence during the student protest. Union Minister JP Nadda has said that Rahul is indulging in cheap politics and that the Supreme Court has already ordered the probe.
5: 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट, देख लीजिए इनको अच्छी तरह, देख लीजिए ये, देखिए ये है पैलेट, ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहां लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है. मेरी हार्डन की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे. मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज कीजिए, FIR दर्ज कीजिए. हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक हैं, साहिल हैं ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए. देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, FIR नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है. जब तक FIR नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं.
13: इस पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है. राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है. कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीहत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है. आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस कि क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है. डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है. प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ यज्ञ को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है. इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है.
14: And Rahul Gandhi continues to sit on dharna at the Parliament Street Police Station. We'll sip into a short break now. International news coming up on the other side. Stay with us.
15: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
16: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
15: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे। थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।
5: सबका राजा आर्द्र मसाला।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
2: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
3: Launch control, 0 to 100.
4: This isn't just about cars and bikes. This

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
4: रियली
3: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
4: How?
3: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
4: It's the Mahi way.
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
4: रियली
3: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
4: How?
3: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
4: It's the Mahi way.
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kola Spa at home.
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,

0: IR says police resorted to lathi charge and pellets were fired during the protest. The complainant claims a pellet struck his right eye, causing serious injury. He was taken for medical exam, etc. That has been now mentioned in the FIR. The FIR is saying that
1: what
0: the
1: has
0: police
1: it been
0: has
1: no, no, no. It is the version of the said. Victim.
2: Correct.
0: No, of course. The FIR will have, the victim will have my mentioned. Report only.
1: But this is again. One second. See, I am only speaking as a lawyer. I am not speaking. You are thinking I am speaking as BJP.
2: Sure.
1: आप no, वो no. बीजेपी का फिल्टर हटा दो उनसे हटा दो
2: हटा
1: ना आप एनसीपी हो ना मैं बीजेपी हूँ आप भी प्रवक्ता से हट गए मैं भी हट गया आपको हटाया गया मैं हट गया सुन
0: मैंने
1: देखा ना वो तो पहला फोटो लिया और फिर हटा दिया सुन लो नो आई एम ओनली सेइंग दिस माय डियर फ्रेंड अनीश कवांडे जी दैट आइदर यू टेल मी फॉर अ फैक्ट दैट साहिल इज राइट दैट द सिक्योरिटी फोर्सेस आर फायर्ड
2: I am saying Sahil is somebody who is
1: so
2: an Indian citizen.
1: Hmm.
2: No, an Indian citizen has made a serious accusation. Three things must happen. Either the Home Minister must come and tell the country were pellet guns fired or not.
1: Minister
2: Two, if pellet guns were not fired, then the police must clarify. Hmm. And if
1: police,
2: pellet
1: has,
2: guns,
1: police has clarified, if, we no, don't then, have pellet guns.
2: No, one second.
1: Delhi police first
2: no.
1: day.
2: Padmaja,
0: so
2: can we bring up?
0: This was never about
2: Padmaja,
0: the police.
2: No.
0: This was about
2: Padmaja,
0: IAM.
2: I have a very simple question. Now. There can only be two possibilities. Then either the police forces use these pellet guns, in which case it's a act that deserves to be condemned or that somebody random had pellet guns in the national capital.
0: Are he is only drawing you in because of one technicality. Say
1: I have no
0: rapid action force, which is a unit of the CRPF, where you are saying police and he is hinging on that technicality.
1: On Padmaja's show, and Padmaja is allowing this is a big news for me, that she is saying FIR should be drawn on either this inference, not on fact. What has he said? That ya to ye ho sakta
2: hai, ya to entirely separate the FIR. Agar main kehta ki aapne mujhe mara hai, to wo FIR ho जाता है इन्वेस्टिगेशन कैन फाइंड कि आइदर आपने मुझे मारा या मैंने आपको मारा
1: आप
2: वो इन्वेस्टिगेशन की बात
1: द प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ इग्नोरेंस द इग्नोरेंस ऑफ लॉ
0: लुक ऑल ऑफ दैट इज वाटर अंडर द ब्रिज बिकॉज़ नाउ द एफआईआर हैज बीन फाइल्ड
1: नाउ काउंटर क्वेश्चन इज झारखंड का एफआईआर कब विड्रॉ
0: अरे छोड़ो ना वो डिबेट अभी झारखंड आप जाओ
1: झारखंड के स्टूडेंट को बोल दो इंडिया में नहीं है
0: अरे अभी आप एनालिस्ट रहो ना बैंकर भी बन गए बस समीर जी अब नाउ वी हैव गॉट साहिल लोचा हु हैज कम आउट एंड थैंक राहुल गांधी माय क्वेश्चन इज पॉलिटिकली डू यू थिंक दिस इज A win for Rahul Gandhi.
3: मुझे लगता है कि राहुल गांधी की एक रूप से जीत मानी जाएगी इस बात को देखिए घटना कब घटी थी 20 जुलाई को हुई थी आज 21 अगस्त हो चुकी है एक महीना इस पूरे घटना को हो चुका था और मुझे लगता है कि एक इसके दो पहलू है क्या राहुल गांधी इसके पहले नहीं आ सकते थे राहुल गांधी ने एक महीने का समय क्यों लिया राहुल गांधी ने पहले प्रेस ब्रीफिंग ली इसको लड़के को लेकर उस समय राहुल गांधी जा सकते थे एफ आई आर दर्ज कराने तो राहुल गांधी ने एक मंथ एफ आई आर दर्ज कराने का समय क्यों लिया कांग्रेस या राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि भाई जो स्टूडेंट है जिसके ऊपर लगा है पैलेट गन उसने कोशिश की होगी और पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की होगी और मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी वहाँ पहुँचे तो उसके पीछे दो कारण मुझे लगता है कि एक तो ये कि जो वंदे मातरम का जो पूरा इश्यू हो रहा है लंबे समय चल रहा है कांग्रेस में बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को जवाब नहीं दे बन रहा था तो हो सकता है ये प्लानिंग हो कि भाई अब वंदे मातरम पर जवाब नहीं देना है तो बेहतर है कि राहुल गांधी इस इश्यू को लेकर जाएंगे तो ये मुद्दा अलग हो जाएगा और वंदे मातरम से बच के पूरा मामला पैलेट गन और होम मिनिस्ट्री के ऊपर पूरी तरीके से आ जाएगा लेकिन जब राहुल गांधी अब जब वहाँ पहुँच गए उसके बाद जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद जी ने पत्रकार वार्ता ली उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा जी का बयान आया तो मुझे लग रहा था कि शायद एफआईआर नहीं होगी और राहुल गांधी के ऊपर या तो फोर्सफुली हटाया जाएगा या राहुल गांधी को कन्विंस किया जाएगा और राहुल गांधी वहाँ से चले जाएंगे अब जब राहुल गांधी को यह तय कर लिया कि राहुल गांधी एलओपी वहाँ बैठे हुए और पुलिस ने तय किया कि एफआईआर दर्ज करेंगे तो पुलिस को मुझे लगता है कि पुलिस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को आकर बताना चाहिए था कि हम क्यों एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं क्या कारण है कि हम दर्ज कर रहे हैं आपने राहुल गांधी को पूरा क्रेडिट देने की कोशिश क्यों की पुलिस बता सकती थी ना कि अभी तक हमने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की और आज अगर हम दर्ज कर रहे हैं तो किस कारण से कर रहे हैं राहुल गांधी के कहने पर आप एफआईआर दर्ज कर रहे हो राहुल गांधी मीडिया में आकर पूरा बता रहे हैं कि मैं 6 घंटे बैठा रहा उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है तो मैसेज ये जा रहा है कि राहुल गांधी के दबाव में आपने एफआईआर दर्ज किए
0: एंड ऑल्सो लुक आई मीन द काइंड ऑफ विजुअल्स दैट आर कमिंग लेट्स जस्ट प्ले आउट वन ऑफ देम वेयर राहुल गांधी वाज सीन आर्ग्यूइंग इनसाइड अ रूम वेयर ही सेड कि मैं यहां पे 1 घंटे नहीं 2 घंटे नहीं मैं 20 दिन 60 दिन यहां पर बैठूंगा मैं एंड लुक अब तो कांग्रेस रहेगी ना जननायक के दबाव में हो गया ये बोलने तो खत्म कर
3: दीजिए मेरा एक लाइन ये कहना था कि अगर पुलिस खुद अपनी पीसी ले लेती अगर आज दोपहर को ले लेती 4 बजे ले लेती 5 बजे तो आपने तय कर लिया कि आप एफआईआर दर्ज करेंगे तो आप मीडिया में आके बता देते कि हम क्यों एफआईआर दर्ज कर रहे हैं कि धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और अभी तक हमने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की थी और सिर्फ राहुल गांधी या इससे हम एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं हमारे एफआईआर दर्ज करने का यही कारण है

0: मुझे लगता है कि इससे पुलिस का अपहरण मिलता कि पुलिस ने अपने कारणों से एफआईआर दर्ज किए। अब सीधे सीधे आपने राहुल गांधी ने 6 घंटे वहां धरना दिया, आप एफआईआर दर्ज करते हो, आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आता। पहले रविशंकर प्रसाद जी का बयान आता है, फिर जगत प्रसाद नड्डा जी का आता है, तब तक ये लगता है कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं ऐसा क्रेडिट मिलेगा।
1: देयर नीड्स टू बी मोर क्लैरिटी एंड ऑलरेडी द कांग्रेस इज सेइंग दिस इज बिकॉज ऑफ जननायक। लेट्स क्विकली लिसन इन टू दैट एंटायर कन्वर्सेशन दैट हैपेंड दैट आई एम विलिंग टू सिट फॉर एज लॉन्ग एज इट रिक्वायर्स।
2: 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठे हुआ।
3: Sir, already submitted.
2: No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Very simple. You are not doing it,
3: sir.
2: Okay.
1: ये किसका आइडिया था? राहुल गांधी का था, प्रियंका गांधी का था, किसका आइडिया था?
4: See, how can I say that? But it was Congress Party's idea. And more than Rahul Gandhi's victory, it is actually government's defeat. Because Delhi police was not lodging the FIR, obviously, on the instructions of the PMO or Ministry of Home Affairs. And they had to do it. They had to lodge the FIR. So it's a clear-cut defeat of the government.
1: Defeat of the government, sir?
5: Samir ji has made 2 points. Samir ji ka ek point humne utha diya. बट समीर जी का दूसरा पॉइंट हमने छोड़ दिया। दोनों बच्चे उनके अच्छे हैं ना, एक ही बच्चा क्यों अच्छा है? समीर जी के पहले पॉइंट पे, समीर जी आपने अभी जो ये पॉइंट बोला है कि राहुल जी का आपको लग रहा है विक्ट्री हुआ है, ऐसा ना हो कि आपका वीडियो कोट करते हुए अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर दे, सी दिस गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड मैच विद राहुल जी। लास्ट टाइम वो पीएमओ पहुंचे थे, पीएम के रेसिडेंस पे, तो इन्हीं के जो बाकी साथी है वो बोलते हैं कि राहुल गांधी को फुटेज मिल गया, मैं लगा हुआ था। तो मेरा केवल इतना कहना है, केजरीवाल एंड अदर्स शुड नॉट, आपके तो दीप के फ्रेंड भी है, वो भी वीडियो बना देंगे इंस्टाग्राम पे। दूसरी बात, इनका दूसरा पॉइंट तो ये खा ही गए दोनों लोग। इन्होंने बोला वंदे मातरम से डाइवर्ट करने के लिए

0: और द पेरेंट्स ऑफ दो स्कूल चिल्ड्रन आर मोर कंसर्न के स्कूल में पंखा है, लाइट है, डस्ट बोर्ड है, सब चीज़ है. सेकेंडली, आई डिड नॉट नो अनीश सिटिंग एज स्पोक्स पर्सन नॉट ऑफ एनसीपी शरद पवार के तो नहीं है, सीजेपी के भी नहीं है.
1: नेशनल टेलीविजन डोंट मेक सच क्लेम्स बिकॉज़ यू माइट हैव हैड टू लीव योर जॉब बिकॉज़ ऑफ मेनी रीजंस. आई थैंकफुली स्टिल हैव माय जॉब.
2: ओके ओके फिनिश फिनिश यस.
0: ही इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ एससीजेपी. यू नो व्हाट इज एससीजेपी? You don't know? सिलेक्टिव कॉकरोच जनता पार्टी. मतलब आपको पता है क्या है, मैं स्कूल में गया, यहाँ पे एकदम ऐसे जयपुर राजस्थान में मैंने एंट्री की, वहाँ के सारे स्कूल मुझे दिखे, ऑडिट करने में चला गया, अच्छी बात है. फिर एक बगल का स्टेट है पंजाब, वहाँ पे तो जाना ही नहीं है. फिर क्या होता है कि मैं थोड़ा सा इधर उधर उधर उधर जा रहा हूँ, अच्छा मैं चला गया वहाँ पे आंध्र प्रदेश चला गया, एनडीए स्टेट है, बट तेलंगाना नहीं जाना है. तो आई एम जस्ट वंडरिंग दैट व्हेन दी राजनीतिक गोत्र तेलंगाना का बदलेगा, जब राजनीतिक गोत्र बदलेगा तब ये जाएंगे वहां पे सिटीजन ऑडिट, तब शुरू होगा, अच्छी बात है. थर्डली, मेरा सिर्फ इनसे इतना एक सवाल है कि ये 250 स्टूडेंट्स 250 गूंस को लेकर जाते हैं और वहां की महिला जो बोलती है कि डोंट अटैक माई स्कूल, आई फेल्ट स्केयर्ड दैट दिस 250 गून्स हैव कम, सो शी इज नॉट सिटीजन, द 250 गून्स आर सिटीजन्स. ओके. फाइनली, आपने वो वीडियो देखा है अभिजीत दिपके का? अभिजीत दिपके महाराष्ट्र के एक स्कूल में गए, लातूर में शायद, वहां पे कैमरा रेडी, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, बच्चे खाना खा रहे हैं, मैंने इन बच्चों को खाना दे दिया है, मैं इनका सुधार कर रहा हूँ. वहां से आवाज आई एक गांव वाले की, ये बच्चे स्कूल के नहीं है. अभिजीत दिपके वो मुए मुए मुए मुए वो चलता है ना बैकग्राउंड में, मुए मुए हो गया उनका.
2: चलो, शहजादा
0: तो मतलब कि इतना बड़ा फ्रॉड.
2: ओके,
1: पर अगेन ना द प्रॉब्लम
2: इज शहजादा ऑलरेडी गिवन एज अ
1: यू नो कंसर्नड अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द स्कूल. वी आर नॉट कंसर्नड अबाउट द फैक्ट दैट पेरेंट टीचर्स एसोसिएशंस डू नॉट हैव द पावर टू क्वेश्चन दीज अथॉरिटीज इन द स्कूल. वी डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद द फैक्ट दैट अनस्पीकेबल अमाउंट्स ऑफ करप्शन इज द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज स्कूल्स इन सच कंडीशन. अदरवाइज योर डेटा वुड नॉट से 97%.
0: यू नो
1: व्हेन द नो वन इज कंसर्नड.
0: Your channel interview Smriti Irani. Your channel interview Smriti Irani. I saw that interview. Smriti Irani was the education minister in 14-15 when the new NEP was being formed, which is basically about this. How many recommendations Rahul Gandhi gave?
2: Okay, I'm completely out of time. Look, all of these questions, you are perfectly well within your rights to ask questions of what is happening, whether the system is up to, up to the mark. But is the method the right one? I will leave it to the judgment of our viewers. Of course, we hope to make this a regular feature where we just bash through the big stories to really figure out what their political implication and fallout could be or what the political benefit could be. For the time being though, all gentlemen for joining us. Thank you very much and thank you for watching.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

वक्त रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।

0: standard browsers like Chrome or Safari. It requires special software, such as the Tor, the Onion router. Just as an onion has many layers, users' identities are concealed behind multiple layers of routing and encryption. This anonymity is one reason the technology has attracted criminal misuse.
1: देखिए जो इंटरनेट है वो एक तरह से आइसबर्ग है जो उसका पोर्शन आप देखते हैं जिसको हम सरफेस नेट बोलते हैं वो लगभग 5% या 10% के बीच में है जिसमें आपका सारा गूगल सारा यूट्यूब सारी टाइप की सरफेस वेबसाइट्स ब्राउजिंग सब कुछ होता है और इसके लिए कॉमन ब्राउजर्स जैसे क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह यूज होते हैं लगभग 80% से ज़्यादा है इंटरनेट का वो पोर्शन जिसको हम डीप वेब बोलते हैं या डीप नेट बोलते हैं डीप नेट वो पोर्शन ऑफ इंटरनेट है जिसके लिए आपको स्पेशल क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं जैसे कि लॉगिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड जिसमें आपके सारे इंश्योरेंस रिकॉर्ड बैंकिंग रिकॉर्ड्स ईमेल्स इसके लिए भी आपको कोई स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं होती है डार्क नेट वो लगभग 7% से 8% ऐसा पोर्शन ऑफ इंटरनेट है जिसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप का ब्राउजर चाहिए जिसको हम द अनियन राउटर कहते हैं टॉर टॉर या द अनियन राउटर क्यों उसको अनियन राउटर कहा जाता है क्योंकि वो ब्राउजर आपकी एनोनिमिटी इंश्योर करता है
0: एंड इट इज दिस एनोनिमिटी दैट मेक्स द डार्क नेट सो डिफिकल्ट टू पुलिस अ यूजर्स रियल लोकेशन कैन बी कंसील्ड The digital trail can pass through multiple countries before reaching its destination.
1: Tor में अगर कोई आपको मैसेज अपने नेबर को भी भेजना है जो आपके बगल में बैठा हुआ तो वो 20 कंट्रीज के थ्रू हॉप ऑन होते हुए जिसको हम कहते हैं मल्टी प्रॉक्सी मल्टी प्रॉक्सी के प्रोसेस से आते हुए आपके नेबर के पास जाएगा तो उसको बैक ट्रैक करना बहुत मुश्किल होगा तो बैक ट्रैक करना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है इसीलिए इसको द अनियन राउटर कहते हैं
0: बट व्हाट डज दिस हिडन वर्ल्ड लुक लाइक
2: तो यहाँ पर लेफ्ट एंड सोल्ड यहाँ पर सोल्ड कितना बता रहा है लेफ्ट यूनिट मतलब ये सोल्ड हो
3: चुका
2: सोल्ड हो चुका
0: दिस इज दिलशान शेख अ टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट सिंस चाइल्डहुड He became deeply interested in understanding the internet. What started as curiosity eventually brought him onto the radar of cyber experts. Today he assists law enforcement as an ethical hacker. What Dilshan showed us on the dark net may surprise you.
2: इसमें से हम एक मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे आज और देखें कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ इजीली हमें अवेलेबल मिलेगी और हम किस तरीके से इजीली किसी का भी डेटा या कुछ भी चीज़ हम इजीली बाय कर सकते हैं इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे जो लीक्ड डेटाबेस होते हैं आईडी पासवर्ड के साथ वो हम यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं इनके नेटवर्क्स होते हैं वहाँ पर ऑर्डर प्लेस हुआ वो हिडन नेटवर्क है वो एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं बेसिकली कि वो क्या कर रहा है बंदा उनका नाम क्या है यहाँ पर नाम जो होता है एक यूज़र आईडी के नाम पे होता है एंड दैट्स ऑल इसमें ना कोई केवाईसी होती है ना कोई मेल दिया जाता है आप एक नाम सेलेक्ट कर लीजिए और उससे पासवर्ड बना दीजिए आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा
3: पेमेंट तो, कैसे होती है
2: इसमें जो पेमेंट होता है वो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में होता है ब्लॉक चेन ट्रांजेक्शन के ऊपर बिटकॉइंस वगैरह में तो ये सारे लॉग्स ये देखिए पेपल के लॉग्स है इसके अंदर तो ये सारे लॉग्स होते हैं बैकएंड के जो अटैकर के लिए जो हैकर्स के लिए बहुत जो स्कैमर के लिए बहुत यूजफुल होते हैं तो ये सारा डेटा होता है ये आईडी कार्ड्स है जो अवेलेबल है अलग अलग कंट्रीज़ के जो यूज़ होता है इसको फ्रॉड के तौर पे आप यूज़ कर लो इसको सिम कार्ड निकालने के तौर पे यूज़ कर लो रियल कार्ड
3: और कितना बिक चुका है
2: इतने यूनिट
3: 22,000 यूनिट्स बिक चुकी हैं ये तो ये डार्क नेट पे आधार कार्ड अवेलेबल है
2: हाँ
3: लोगों के
2: लेकिन 50 प्लस इंडियन आधार कार्ड एंड पैन कार्ड डॉक्यूमेंट ऑल वैलिड विद ऑल इंफॉर्मेशन एक यूजर आईडी में डालता हूँ जैसे ये
3: मतलब आपका ईमेल
2: हाँ यहाँ पर
3: अकाउंट कब करेक्ट उसका पासवर्ड लीक हुआ है
2: देखिए एक जगह ब्रीच हुआ है

0: अगर मुझे इनका देखिए अभी यहाँ से पासवर्ड मुझे शो कर दो, मुझे सर्विस पाई करनी पड़ेगी तो मुझे पासवर्ड भी मिल जाएगा। और डेफिनेटली उसे ये पता
1: तो
0: नहीं
1: अगर
0: होगा
1: ये लीक हो चुका है तो आप
0: और उसने पासवर्ड चेंज नहीं किया होगा इन शॉर्ट, तो आई कैन गेट एक्सेस टू द
1: अकाउंट
0: एंड अराउंड 13 बिलियन अकाउंट्स इन आ लीक डेटाबेस। ठीक है, तो ये
1: बिलियन अकाउंट्स का लीक डेटाबेस
0: हाँ,
1: इनके पास
0: करेक्ट। अभी देखिए ये काउंटर फीडिंग नोट्स है, एचक्यू प्रिंट्स करके है नाम से, तो ये डिफरेंट सर्विसेज बेच रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल। अभी फॉर एग्जांपल आपको सोशल मीडिया अकाउंट हैक करवाना है तो ये एक एक्स वाई जेड वेबसाइट है, $100 ले रहा है, इंस्टाग्राम पे क्लिक करो,
1: टिकटॉक,
0: ठीक है। ये यहाँ पर अगर आपको अनोनिमस नंबर्स वगैरह बाय करने हैं, जो भी सिम कार्ड्स वगैरह बाय करने हैं, तो ये नंबर्स मिलते हैं, जैसे कि टैक्स नाउ के अकाउंट है, जो टैक्स नाउ वहाँ पर अलग होता है, तो यहाँ पर मॉडल मतलब किसी के नाम का आपको मिल जाएगा, जो आप यूजर आईडी पासवर्ड एक किस्म का डिजिटल सिम ही बोल सकते हैं,
1: जो साइबर फ्रॉड के लिए क्रिमिनल
0: यूज करते हैं।
1: और ये कितने में बिक रहा है?
0: $10 मतलब इंडियन ₹700। इसके पीछे कौन है वो रिवील नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आइडेंटिटी होती है वो यूजर नेम होता है।
2: What Dilshan warns us about has recently happened with Bank of Baroda data. Bank of Baroda had to initiate a forensic investigation into a breach involving critical data, with reports of around 1 terabyte of data being leaked. The leaked material allegedly includes customer information, identity documents, loan papers, and internal audit reports. This incident adds to a series of cybersecurity breaches involving major Indian companies and institutions in recent months. Thousands of websites here openly operate as marketplaces for criminal activity. Transactions are conducted through cryptocurrency, making it difficult for law enforcement agencies to trace the people behind them. Maharashtra Cyber says its investigations reveal just how large this underground ecosystem can be.
1: Sir, ye screen pe hum kya dekh rahe hain is waqt?
3: मैम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि लाइव जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं अक्रॉस वर्ल्ड, सो यू कैन सी एज ऑफ नाउ टोटल अटैक्स व्हिच इज हैपनिंग करंटली अक्रॉस वर्ल्ड, व्हिच इज द नंबर इज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर स्क्रीन, दैट इज 10,16,01,608 अटैक्स आर हैपनिंग।
1: ये लाइव फीड इस वक्त
3: yes,
1: देख रहे हैं
3: यस yes.
1: यानी कि एक तरफ जिन कंट्रीज में वॉर छिड़ी हुई है या जो इसका टारगेट बन रहे हैं
3: yes.
1: उसी समय में साइबर अटैक भी
3: exactly.
1: उन पे किस तरह से हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं।
3: डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है डार्क वेब पे, सो दीज आर द फ्यू प्लेटफॉर्म्स एंड व्हाट दे आर सेलिंग, ड्रग्स, कार्डिंग डिटेल, काउंटरफिट करेंसी, सो दीज आर द नंबर ऑफ डार्क वेब लिस्टिंग्स। सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि ड्रग्स सेल हो रहे हैं डार्क वेब पे मीडियम।

0: For Maharashtra Cyber, tracking offenders who hide behind anonymity remains one of law enforcement's toughest tasks. Take the recent example of bomb threat emails. Cyber investigators say such emails may sometimes be routed through anonymity-focused services on the dark web. According to investigators, anti-social elements and terror-linked actors have also attempted to misuse such digital platforms.
1: Dark web ke jo criminals hain, wo ek dark web ki anonymous email service use kare. Jis service ka use karne ka unhe benefit ye hota hai ki unke emails ko easily trace nahi kiya ja sakta hai. Jaise aapko pata hoga, kuch saalon pehle Gmail, Outlook का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे, और वो इजीली ट्रेस भी कर सकती थी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी. बट नाउ दे आर यूजिंग द एनोनिमस ईमेल सर्विस विच इज अवेलेबल ऑन डार्क वेब. सो दिस इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन. इसी के तरह कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है डार्क वेब पे जिसका इस्तेमाल करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं.
2: ओके, तो ये डार्क वेब नहीं है लेकिन डार्क वेब के फीचर
1: से, जैसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है एक फीचर है इसके, इजीली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से डिकोड नहीं कर पाते इनके एसएमएस.
0: For investigators, the challenge is not only identifying what is happening online.

0: but finding the people behind it. This is a dark web chat room, where users operating under fake identities interact anonymously, often attempting to buy or sell illegal goods and services.
1: क्रिमिनल को अगर पकड़ना है तो क्रिमिनल के ऐसे सोचना चाहिए उस हिसाब से हमें क्या करना है कि ऐसे ये जो चल रही है जो क्रिमिनल है तो हमने भी उस क्रिमिनल के जैसे मैंने चैटिंग स्टार्ट कर दी तो अगर यहाँ से मुझे कोई रिप्लाई देता है तो कौन तो फिर मैं उसके साथ जेन्युइन चैट करूंगा
2: कि आप उसके साथ यहाँ पे इंगेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो
1: कुछ डेटा उसका ओरिजिनल डेटा रिवील कर दे और उस अगर कोई भी अगर छोटी सी मिस्टेक वो कर दे तो फिर हम उस तक पहुंच सकते हैं। उनको भी मालूम है, क्रिमिनल को भी मालूम है कि हम ऐसे ऐसे चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम पकड़ा नहीं जाए, पर हमें भी उतना एडवांस टेक्नोलॉजी में जान के कि अगर उन्होंने टॉर भी यूज़ किया है तो वो टॉर में फिर जैसे मैंने बोला कि क्रिमिनल की सोच के जैसे हम देखेंगे
2: सोच
1: तो हाँ तो एटलीस्ट एक क्रिमिनल के पास भी अगर हमें जाना है तो उसे उसको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा।

0: In this underground marketplace, firearms, explosives, poison, and drugs are reportedly traded with few identity checks.
1: तो मैं गन्स नॉर्मल सर्च किया और हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स यहाँ पे सामने आ गए. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एम्युनिशन के, ड्रोन्स के, यूएवीज के, एक्सप्लोजिव्स के, गन्स के, नाइव्स. तो नॉर्मल मुझे सिर्फ बेसिक डिटेल डालनी है कि मेरा नाम क्या है. वो मैं गलत डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, जैकब डाल सकता हूँ, मेरा नाम कुछ और होगा.
2: और इसके साथ साथ जो पेमेंट मोड है वो क्रिप्टो है, तो ये ओवरऑल एक प्रोटेक्ट करता है क्रिमिनल को.
1: क्रिप्टो अपने आप में एक एड्रेस की तरह होता है. वो आपको एड्रेस से पता नहीं चलेगा उसके पीछे पर्सन कौन है. तो वॉलेट प्राइवेट वॉलेट हो सकते हैं, वो यूज कर रहा होगा, जिसे कोई टारगेट नहीं कर पाएगा.
2: पर यहाँ पे लोग स्कैम भी तो होते होंगे.
1: हाँ, होता है, होता है.
2: अगर वॉलेट लिंक किया तो स्कैमर्स तो भरे हुए हैं यहाँ पे.
1: हाँ,
2: अगर इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो
1: ऑब्वियसली. जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपको सर्विसेज मिलते हैं लाइक हिटमैन्स के, जो मोस्टली वो ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं. वो आपसे बस पैसा लेते हैं, स्कैम करते हैं, या फिर कुछ और, हम आपको अकाउंट्स बेचेंगे या कुछ आपको डेटा चाहिए.
2: हाँ.
1: तो आपसे वो डिटेल्स पहले ले लेंगे. हो सकता है कि वो आपके कंप्यूटर में भी एंटर कर जाएं किसी न किसी तरीके से, अगर आप प्रॉपरली वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं डार्क वेब को, टॉर को.

0: Is the darknet used only by criminals? No. Interestingly, technologies behind it were originally developed to help protect sensitive communications and support privacy. They have also been used by journalists, activists, and individuals in regions with limited freedom of expression. However, over time, with wider public access and the rise of cryptocurrencies such as Bitcoin, illegal marketplaces expanded rapidly. Today, investigators say a substantial portion of darknet activity is associated with unlawful trade and cybercrime.
1: कुछ साल पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। हमें पता चला कि अब जो है टेररिस्ट फिदाइन अटैक नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें उनके जान जाने की खतरा है। वो कह रहे हैं सबसे अच्छा अटैक है ड्रोन अटैक्स कीजिए। और उस ड्रोन में हल्का सा आरडीएक्स लगा दीजिए जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाए आफ्टर इट्स ऑपरेशन। पहले वो आरडीएक्स गिराए, फिर उसी आरडीएक्स से खुद भी डिस्ट्रक्ट सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाए। ये चैट फोरम में डिस्कस हो रही हैं ये बातें बाय सर्टेन एंटी नेशनल एलिमेंट्स। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड थ्रू डार्कनेट हु दीज एंटी नेशनल एलिमेंट्स आर। आफ्टर फ्यू मंथ्स ओनली ड्रोन अटैक स्टार्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड नाउ मोर।
2: किस साल की बात है सर?
1: ये मैं आपको 2019 की बता रहा हूँ। But now drone attacks are the norm. जैसे कि आप देख रहे हैं ज्यादातर wars भी
2: के जरिए
1: हमारे drone से हो रहे हैं।

0: रॉन्ग।
1: भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है, लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। डेढ़ साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है, मेरे एक साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के, हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर ये सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा।
2: Political row over Vande Mataram is intensifying, with the Congress and the BJP locked in a war of words. Congress's decision to sing only first two stanzas at its events has drawn sharp BJP criticism. The Home Minister has slammed the Congress for the decision, while the Defence Minister Rajnath Singh has called it a grave matter of constitutional concern. Congress leaders are defending this move, citing the 1937 resolution. The Karnataka Home Minister Priyank Kharge has said that in 1937, Gandhi, Patel, Nehru, Netaji Bose and even Tagore deliberated on which portions of Vande Mataram should be sung publicly and why. Meanwhile, the Modi government is taking the full redemption to university campuses. Here are some political reactions that came throughout the day.
3: दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी, वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया, और ये ऐतिहासिक निर्णय।
4: कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना, बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है। भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है, और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है। यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है, और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। वंदे मातरम का विरोध करके कांग्रेस ने अपने नासमझी भरे खतरनाक इरादों को देश के सामने बता दिया है।
5: 1937 के अधिवेशन में जब इसको शामिल किया गया, ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर शामिल किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको चिट्ठी लिखकर सलाह मांगी और उन्होंने सलाह के ऊपर इसको शामिल कराया, और उन्होंने ही उसमें से जितना पार्ट था वो तय किया था। सरदार पटेल भी उस अधिवेशन में थे, तो उनके बारे में इनकी क्या राय है? क्योंकि बाकी लोगों के बारे में तो ये बोलते रहते हैं, उनके बारे में बताएं क्या राय है। हम तो अपने पुरखों की विरासत को लेकर चल रहे हैं, इनको तो नया नया प्रेम जागा है। और जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे उस समय।
6: कांग्रेस से 1937 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे तमाम लोग मौजूद थे, और जिन्होंने ये तय किया था कि सिर्फ दो स्टेंजा ही पढ़ा जाएगा उसका। तो इसलिए उस ये हम लोग ने तय किया कल वर्किंग कमेटी में, कांग्रेस अपने कार्यक्रम में जो परंपरा हमारी चली आ रही है 90 सालों से, हम उस परंपरा के अनुसार हम इस गीत को गाएंगे।
7: हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम गाते गाते दम तोड़ दिए थे, आप लोग कहाँ थे? इतने साल आप लोग भी यही गाना गाए थे, 12 साल से आप हुकूमत में बैठे, आपने भी यही गाना गाए थे, रातों रात अब यार।

0: in the High Court, but today on the streets of Ranchi and Giridih, this scuffle. At Ranchi, you had a scuffle between the students and the police, and then Giridih, it was a scuffle between the JMM workers and the protesting students.
1: All right, Prabhakar, thank you very much for getting us those details, keeping a very close watch on that story. Meanwhile, we move on to some other political developments that we are tracking. A political showdown happened in the national capital today with Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra sitting on a dharna outside the DCP office at the Parliament Street in the national capital. Rahul Gandhi had accused Delhi police of refusing to register an FIR over the pellet gun injury that was suffered by a student protesters. His name is Sahil, and this happened during the July 20th protest. Now, Rahul says that an FIR must be filed, a judicial inquiry must be conducted, and that action should be taken against those responsible. He has said that he will not leave until the FIR had registered, which eventually was registered by the Delhi police after 5 hours of dharna that was staged by Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, and other Congress workers. Now, and while all of this was happening, the BJP has questioned Rahul Gandhi and has accused him of disrespecting the rule of law and spreading anarchy. It was Union Minister JP Nadda taking the charge, saying that Rahul is indulging in cheap politics and that the Supreme Court has already ordered for a probe.
2: Delhi police ne kaha ki humne charre nahi chalaye. तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज कीजिए।
3: आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है।
4: गवर्नमेंट FIR फाइल नहीं कर रही, जिसके शरीर में सब जो पैलेट बुलेट्स हैं, छर्रे हैं, वो अभी है। और गवर्नमेंट ने कहा था जो लोग गलती किए हैं उन पर एक्शन लेंगे, लेकिन अब तक FIR किसी के खिलाफ फाइल नहीं किए, इसीलिए राहुल जी और प्रियंका जी वहाँ पर धरना बैठी है। गवर्नमेंट जो कहती है वो करती नहीं, आखिरी में हमको ऐसे स्टेप लेना पड़ता है लोगों के लिए, छात्रों के लिए, हम वो स्टेप ले रहे हैं।
5: जो साहिल लोचब है, जिसका शरीर में छर्रे के निशान दिखाए आप सबको राहुल जी ने, कि अब FIR होगी, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसने आदेश दिए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजनीतिक आदेश किसने दिए थे पैलेट गन्स चलाने, कुछ नहीं हुआ, वो भी इंतजार चलती रही। आज सुबह से अब इंतजार कर रहे हैं डीसीपी ऑफिस के बाहर धरना देके राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कि FIR होगी। 6.5 घंटे होने आए हैं, FIR नहीं कर रहे। पुलिस वाले कह रहे हैं कि ऊपर से दबाव है। ऊपर से मतलब किसका दबाव है? जय शाह का है, अमित शाह का है, किसका है?
1: From the national capital, let's move on and tell you what happened in Rajasthan today. Tensions erupted in Jaipur, where in what is being billed as a visit to inspect the state of a government primary school descended into an ugly confrontation. This after the members of the Kokra Janata Party, who had arrived to assess the condition of the school, were allegedly stopped and confronted with the situation escalating into an attack on the visiting team. Stones were reportedly pelted at CJP volunteers, the window of their vehicle was smashed, and even several members of the team were allegedly assaulted. The CJP co-convener Ashutosh Ranka has alleged that the attackers were goons and claimed that a number of volunteers, including women workers, sustained injuries in the clash. But at the heart of the controversy is a claim that the government school was being inspected, was allegedly functioning out of a buffalo shed. Now, this is an allegation that raises uncomfortable questions, of course, but about the condition of the basic public infrastructure and the quality of the facilities being provided to children. Well, the CGP says that its volunteers had gone to spot precisely to document these things and to question the conditions. Instead, the inspection itself allegedly became a flashpoint, with the team facing resistance and violence. The CGP says that its School Theek Karo campaign is a nationwide exercise, and its stated objective is to inspect government schools and highlight gaps in the basic infrastructure. But the political question that everybody is still asking is, why does it that this campaign appear to be generating particularly sharp confrontations in the BJP ruled states?
6: Congress Janata Party's co-convener Ashutosh Raka made a plan to visit a school in Rampura Kaurpura village of Jaipur. It is nearly around 5 kilometers from Jaipur main city, but the villagers has opposed their visit. They have protested against their visit. The villagers said that we don't want any outsider to come our village, and especially the people who has claimed against the Ram, against Hindutva, who has put its slogans against Hindutva, against Ram, and who has abused Prime Minister's mother. So they were just saying that we are the villagers, we are incapable of making school in the village. So they were just protesting against their visit. And when the team of Cockroach Janata Party Ashutosh Raka arrived here, they have just stone pelted on them. They have made them run to outside from the village, and few Cockroach Janata Party activists, few workers have been injured. Here's a girl with me. All of you have been injured?
7: Ji sir. Yes sir.
6: आप लोगों को चोट भी आई है? आपके साथियों को चोट आई है?
8: हमारे साथियों को चोट आई है जी. हम ठीक हैं अभी के लिए, हम अपने साथियों के साथ हैं.
6: ओके, सो यू नो फ्यू वर्कर्स हैव मैनेज्ड टू रीच द विलेज, सो दे ट्राई टू रश देम आउटसाइड द विलेज. एंड दिस इज रामपुरा कवरपुरा विलेज. द स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ऑफ रामपुरा कवरपुरा इज रनिंग इन अ काउ शेड सिंस अ ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर हाईकोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर दैट नो स्कूल वुड बी परमिटेड टू रन in the duran in the in any kind of dilapidated building. You can see this is a Cockroach Janata Party's worker, and you can see his hand, all he has got those injuries on the hand and the neck and on the foot, and they are just saying that we are doing nothing wrong.
9: भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है, लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है. ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है. डेढ़ साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है. मेरे एक साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का. सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था. पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के, हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं. पुलिस पूरी तरह गायब थी. आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है. मदन दिलावर के कहने पर ये सब हुआ है. 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा.
1: Political row over Vande Mataram is intensifying, with the Congress and the BJP locked in a war of words. Congress's decision to sing only first two stanzas at its events has drawn sharp BJP criticism. The Home Minister has slammed the Congress for the decision, while the Defence Minister Rajnath Singh has called it a grave matter of constitutional concern. Congress leaders are defending this move, citing the 1937 resolution. The Karnataka Home Minister Priyank Kharge had said that in 1937, Gandhi, Patel, Nehru, Netaji Bose and even Tagore deliberated on which portions of Vande Mataram should be sung publicly and why. Meanwhile, the Modi government is taking the full redemption to university campuses. Here are some political reactions that came throughout the day.
10: दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी, वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया. जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान

0: ध्यान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया और ये ऐतिहासिक निर्णय।
1: कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है। भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है। यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है, और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। वंदे मातरम का विरोध करके कांग्रेस ने अपने नासमझी भरे खतरनाक इरादों को देश के सामने बता दिया है।
2: 1937 के अधिवेशन में जब इसको शामिल किया गया, ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर शामिल किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको चिट्ठी लिखकर सलाह मांगी और उन्होंने सलाह के ऊपर इसको शामिल कराया और उन्होंने ही उसमें से जितना पार्ट था वो तय किया था। सरदार पटेल भी उस अधिवेशन में थे, तो उनके बारे में इनकी क्या राय है? चूँकि बाकी लोगों के बारे में तो ये बोलते रहते हैं, उनके बारे में बताएं क्या राय है? हम तो अपने पुरखों की विरासत को लेकर चल रहे हैं, इनको तो नया नया प्रेम जागा है। और जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे उस समय।
3: कांग्रेस से 1937 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे तमाम लोग मौजूद थे और जिन्होंने ये तय किया था कि सिर्फ दो स्टेंजा ही पढ़ा जाएगा उसका। तो इसलिए उस ये हम लोग ने तय किया कल वर्किंग कमेटी में, कांग्रेस अपने कार्यक्रम में जो परंपरा हमारी चली आ रही है 90 सालों से, हम उस परंपरा के अनुसार हम इस गीत को गाएंगे।
4: हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम गाते गाते दम तोड़ दिए थे। आप लोग कहाँ थे? इतने साल आप लोग भी यही गाना गाए थे। 12 साल से आप हुकूमत में बैठे, आपने भी यही गाना गाए थे। रातों रात आप याद आ गए। जो आदमी लोग पार्लियामेंट में आ नहीं सकते, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे सकते, बच्चों पर आपकी ताकत लाद के आप उनको पिटवाते हैं, आप हमें समझा रहे हैं कि हम क्या चीज है।
5: And amid fierce political contest over Vande Mataram, the veteran actor Sharmila Tagore has weighed in, saying that she supports singing of the first two stanzas of Vande Mataram. Her argument is that while those opening verses are inclusive and capable of bringing together people of all faiths, the later stanzas with their religious imagery may not be equally acceptable to everyone in a country as diverse as India. However, actor and BJP MP Kangana Ranaut has now responded, saying that Sharmila Tagore's understanding of art and poetry is limiting. Kangana argues that Vande Mataram is inseparable from India's freedom struggle and should be viewed as a unifying national symbol.
6: मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू टैंसा इज वेरी गुड।
5: विद दैट इट्स टाइम फॉर अस टू स्लिप इन अ वेरी क्विक ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, न्यूज़ एंड अपडेट कंटिन्यू ऑन द अदर साइड।

0: Ahmedabad's gift city today. This is Prime Minister Narendra Modi's dream of building an international financial center. Now I think we're reaching a point where the international financial operators are the ones chasing gift city.
1: Began, there were just about 100 registrations. Today it's close to 1,250.
0: Always be that tension between your aspiration for GIFT City and the reality of Gujarat being a dry state.
1: Within the regulatory framework, everything what would be available outside the state is available.
0: I've been seeing that Edelweiss has been doing a lot of work in and around the GIFT City.
2: I think it's like making an investment in the MF business of 20 years ago.
0: Okay.
2: And hopefully 20 years later, we can say GIFT is what mutual fund is today.
0: How has customer adoption been and how are these products which you're operating out of GIFT faring versus what you do outside?
2: We want this to be a destination for NRIs coming into India via multi-manager. We are also enabling something else, Indians investing abroad.
3: A new Nepal, new possibilities, a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanna, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, commerce, security, infrastructure, tourism, soft power. NDTV Anviksha, ideas across borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
4: So many attacks.
3: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
4: It's incredible.
3: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000.
5: The political row over Vande Mataram is intensifying, with the Congress and the BJP locked in a war of words. Congress's decision to sing only first two stanzas at its events has drawn sharp BJP criticism. The Home Minister has slammed the Congress for the decision, while the Defence Minister, Rajnath Singh, has called it a grave matter of constitutional concern. Congress leaders are defending this move, citing the 1937 resolution. The Karnataka Home Minister, Priyank Kharge, had said that in 1937, Gandhi, Patel, Nehru, Netaji Bose and even Tagore deliberated on which portions of Vande Mataram should be sung publicly and why. Meanwhile, the Modi government is taking the full redemption to university campuses. Here are some political reactions that came throughout the day.
6: दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया. जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते. मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया और ये ऐतिहासिक निर्णय.
7: कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है. भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है. यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है, और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। वंदे मातरम का विरोध करके कांग्रेस ने अपने नासमझी भरे खतरनाक इरादों को देश के सामने बता दिया है।
8: 1937 के अधिवेशन में जब इसको शामिल किया गया, ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर शामिल किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको चिट्ठी लिखकर सलाह मांगी और उन्होंने सलाह के ऊपर इसको शामिल कराया, और उन्होंने ही उसमें से जितना पार्ट था वो तय किया था। सरदार पटेल भी उस अधिवेशन में थे, तो उनके बारे में इनकी क्या राय है? चूँकि बाकी लोगों के बारे में तो ये बोलते रहते हैं, उनके बारे में बताएं क्या राय है? हम तो अपने पुरखों की विरासत को लेकर चल रहे हैं, इनको तो नया नया प्रेम जागा है। और जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे उस समय।
9: कांग्रेस से 1937 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे तमाम लोग मौजूद थे, और जिन्होंने ये तय किया था कि सिर्फ दो स्टेंजा ही पढ़ा जाएगा उसका। तो इसलिए उस ये हम लोग ने तय किया कल वर्किंग कमेटी में, कांग्रेस अपने कार्यक्रम में जो परंपरा हमारी चली आ रही है 90 सालों से, हम उस परंपरा के अनुसार हम इस गीत को गाएंगे।
10: हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम गाते गाते दम तोड़ दिए थे। आप लोग कहाँ थे? इतने साल आप लोग भी यही गाना गाए थे, 12 साल से आप हुकूमत में बैठे, आपने भी यही गाना गाए थे। रातों रात आप याद आ गए। जो आदमी लोग पार्लियामेंट में आ नहीं सकते, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे सकते, बच्चों पर आपकी ताकत लाद के आप उनको पिटवाते हैं, आप हमें समझा रहे हैं कि हम क्या चीज है।
5: And amid fierce political contest over Vande Mataram, the veteran actor Sharmila Tagore has weighed in, saying that she supports singing of the first two stanzas of Vande Mataram. Her argument is that while those opening verses are inclusive and capable of bringing together people of all faiths, the later stanzas with their religious imagery may not be equally acceptable to everyone in a country as diverse as India. However, actor and BJP MP Kangana Ranaut has now responded, saying that Sharmila Tagore's understanding of art and poetry is limiting. Kangana argues that Vande Mataram is inseparable from India's freedom struggle and should be viewed as a unifying national symbol.
11: मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू टैंसा इज वेरी गुड।
12: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
13: Launch control, 0 to 100.
14: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
15: This car makes no sense, yet it makes every sense.
16: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
17: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not."
18: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
19: Across the country,
3: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait.

0: कब थी? आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अब यह आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा।
1: Political row over Vande Mataram is intensifying, with the Congress and the BJP locked in a war of words. Congress's decision to sing only first two stanzas at its events has drawn sharp BJP criticism. The Home Minister has slammed the Congress for the decision, while the Defence Minister Rajnath Singh has called it a grave matter of constitutional concern. Congress leaders are defending this move, citing the 1937 resolution. The Karnataka Home Minister Priyank Kharge had said that in 1937, Gandhi, Patel, Nehru, Netaji Bose and even Tagore deliberated on which portions of Vande Mataram should be sung publicly and why. Meanwhile, the Modi government is taking the full redemption to university campuses. Here are some political reactions that came throughout the day.
2: दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी, वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया, और ये ऐतिहासिक निर्णय।
3: कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना, बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है। भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है, और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है। यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है, और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। वंदे मातरम का विरोध करके कांग्रेस ने अपने नासमझी भरे खतरनाक इरादों को देश के सामने बता दिया है।
4: 1937 के अधिवेशन में जब इसको शामिल किया गया, ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर शामिल किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको चिट्ठी लिखकर सलाह मांगी और उन्होंने सलाह के ऊपर इसको शामिल कराया, और उन्होंने ही उसमें से जितना पार्ट था वो तय किया था। सरदार पटेल भी उस अधिवेशन में थे, तो उनके बारे में इनकी क्या राय है? चूँकि बाकी लोगों के बारे में तो ये बोलते रहते हैं, उनके बारे में बताएं क्या राय है। हम तो अपने पुरखों की विरासत को लेकर चल रहे हैं, इनको तो नया नया प्रेम जागा है। और जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे उस समय।
5: कांग्रेस से 1937 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे तमाम लोग मौजूद थे, और जिन्होंने ये तय किया था कि सिर्फ दो स्टेंजा ही पढ़ा जाएगा उसका। तो इसलिए उस ये हम लोग ने तय किया कल वर्किंग कमेटी में, कांग्रेस अपने कार्यक्रम में जो परंपरा हमारी चली आ रही है 90 सालों से, हम उस परंपरा के अनुसार हम इस गीत को गाएंगे।
6: हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम गाते गाते दम तोड़ दिए थे, आप लोग कहाँ थे? इतने साल आप लोग भी यही गाना गाए थे, 12 साल से आप हुकूमत में बैठे, आपने भी यही गाना गाए थे, रातों रात आप याद आ गए। जो आदमी लोग पार्लियामेंट में आ नहीं सकते, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे सकते, बच्चों पर आपकी ताकत लाद के आप उनको पिटवाते हैं, आप हमें समझा रहे हैं कि हम क्या चीज़ है।
1: And amid fierce political contest over Vande Mataram, the veteran actor Sharmila Tagore has weighed in, saying that she supports singing of the first two stanzas of Vande Mataram. Her argument is that while those opening verses are inclusive and capable of bringing together people of all faiths, the later stanzas with their religious imagery may not be equally acceptable to everyone in a country as diverse as India. However, actor and BJP MP Kangana Ranaut has now responded, saying that Sharmila Tagore's understanding of art and poetry is limiting. Kangana argues that Vande Mataram is inseparable from India's freedom struggle and should be viewed as a unifying national symbol.
7: मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स. और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स. आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें all the gods are mentioned by name. तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है. तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू टैंसा इज वेरी गुड.
1: With that, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.
8: A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.

0: can't say that the security forces, the CRPF, the RAF,
1: did it.
2: Let me tell you what the FIR says. The FIR says, police resorted to lathi charge and pellets were fired during the protest. The complainant claims a pellet struck his right eye, causing serious injury. He was taken for medical exam, etc. That has been now mentioned in the FIR. The FIR is saying that
0: what
2: the
0: has
2: police
0: has... No. It is the version of the victim.
1: Correct.
2: Yeah, of course. The FIR will have my report only.
0: But this is again, one second. See, I am only speaking as a lawyer. I'm not speaking... You are thinking I'm speaking as BJP.
3: Sure.
0: No. BJP ka filter hata do.
3: Hata do.
0: Aap NCP ho, na main BJP ho. Aap bhi pravakta se hat gaya, main bhi hat gaya. Aap hata gaya, main hat gaya. Sun
2: lijiye.
0: Now, I am only saying this, my dear friend Anish Gawande ji, that either you tell me for a fact that Sahil is right that the security forces are fired at me.
3: I am saying Sahil is somebody who is
0: so
3: an Indian citizen. An Indian citizen has made a serious accusation. Three things must happen. Either the Home Minister must come and tell the country were pellet guns fired or not.
0: Home Minister
3: if pellet guns were not fired, then the police must clarify. And if
0: Police has clarified, we don't have pellet guns.
3: No, one second.
0: Delhi police first day.
3: Padmaja,
2: so
3: can we bring
2: never
3: up?
2: This was about
3: Padmaja,
2: the police.
3: No.
2: This was about
3: Padmaja,
2: RAF.
3: A very simple question.
2: Just Padmaja,
3: do you have reports, the medical reports that all of us have seen?
2: We do.
3: That this indicates a pellet gun injury?
2: And we have shown.
3: Correct?
2: Yes.
3: Now, there can only be two possibilities. Then either the police forces use these pellet guns, in which case it's an act that deserves to be condemned, or that somebody random had pellet guns in the national capital.
2: Are he is only drawing you in because of one technicality. Say,
0: Rapid Action Force, which is a unit of the CRPF, where you are saying police, and he is hinging on that technicality. On Padmaja's show, and Padmaja is allowing this is a big news for me, that she is saying FIR should be drawn on either this inference, not on fact. What has he said? That is entirely separate from the FIR.
3: Agar main kehta ki aapne mujhe mara hai, to wo FIR ho jata. Investigation can find ki either aapne mujhe mara ya maine aapko mara. Wo investigation ki baat.
0: This is the problem, the lack of ignorance, the ignorance of law.
2: Look, all of that is water under the bridge because now the FIR has been filed.
0: Now counter question is Jharkhand ka FIR kab withdraw?
2: Are chodo na wo debate abhi. Jharkhand aap jao.
0: Jharkhand ke student ko bol do India mein nahi hai.
2: Are abhi aap analyst rahe ho na, banker bhi ban gaye. But Samir ji, ab now we've got Sahil Lochab who's come out and thanked Rahul Gandhi. My question is politically, do you think this is a win for Rahul Gandhi?
4: मुझे लगता है कि राहुल गांधी की एक रूप से जीत मानी जाएगी इस बात को. देखिए, घटना कब घटी थी? 20 जुलाई को हुई थी. आज 21 अगस्त हो चुकी है. एक महीना इस पूरे घटना को हो चुका था. और मुझे लगता है कि एक इसके दो पहलू है. क्या राहुल गांधी इसके पहले नहीं आ सकते थे? राहुल गांधी ने एक महीने का समय क्यों लिया? राहुल गांधी ने पहले प्रेस ब्रीफिंग ली इसको लड़के को लेकर, उस समय राहुल गांधी जा सकते थे एफआईआर दर्ज कराने. तो राहुल गांधी ने एक मंथ एफआईआर दर्ज कराने का समय क्यों लिया? कांग्रेस या राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि भाई जो स्टूडेंट है जिसके ऊपर लगा है पैलेट गन, उसने कोशिश की होगी और पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की होगी. और मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी वहाँ पहुँचे तो उसके पीछे दो कारण मुझे लगता है कि एक तो ये कि जो वंदे मातरम का जो पूरा इश्यू हो रहा है, लंबे समय चल रहा है, कांग्रेस में बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी पूरे मामले को लेकर. कांग्रेस को जवाब नहीं दे बन रहा था. तो हो सकता है ये प्लानिंग हो कि भाई अब वंदे मातरम पर जवाब नहीं देना है तो बेहतर है कि राहुल गांधी इस इश्यू को लेकर जाएंगे, तो ये मुद्दा अलग हो जाएगा और वंदे मातरम से बच के पूरा मामला पैलेट गन और होम मिनिस्ट्री के ऊपर पूरी तरीके से आ जाएगा. लेकिन जब राहुल गांधी अब जब वहां पहुंच गए, उसके बाद जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद जी ने पत्रकार वार्ता ली, उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा जी का बयान आया, तो मुझे लग रहा था कि शायद एफआईआर नहीं होगी और राहुल गांधी के ऊपर या तो फोर्सफुली हटाया जाएगा या राहुल गांधी को कन्विंस किया जाएगा और राहुल गांधी वहां से चले जाएंगे. अब जब राहुल गांधी को यह तय कर लिया कि राहुल गांधी एलओपी वहां बैठे हुए और पुलिस ने तय किया कि एफआईआर दर्ज करेंगे, तो पुलिस को मुझे लगता है कि पुलिस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को आकर बताना चाहिए था कि हम क्यों एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं, क्या कारण है कि हम दर्ज कर रहे हैं. आपने राहुल गांधी को पूरा क्रेडिट देने की कोशिश क्यों की? पुलिस बता सकती थी ना कि अभी तक हमने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की और आज अगर हम दर्ज कर रहे हैं तो किस कारण से कर रहे हैं. राहुल गांधी के कहने पर आप एफआईआर दर्ज कर रहे हो और राहुल गांधी मीडिया में आकर पूरा बता रहे हैं कि मैं 6 घंटे बैठा रहा, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई. पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, तो मैसेज ये जा रहा है कि राहुल गांधी के दबाव में आपने एफआईआर दर्ज किए.
2: एंड ऑल्सो लुक, आई मीन द काइंड ऑफ विजुअल्स दैट आर कमिंग, लेट्स जस्ट प्ले आउट वन ऑफ देम वेयर राहुल गांधी वाज सीन आर्ग्यूइंग इनसाइड अ रूम वेयर ही सेड कि मैं यहां पे 1 घंटे नहीं 2 घंटे नहीं, मैं 20 दिन 60 दिन यहां पर बैठूंगा मैं. एंड लुक, अब तो कांग्रेस कहेगी ना जननायक के दबाव में हो गया ये.
4: मेरा एक लाइन
2: बोलने तो खत्म कर दीजिए.
4: मेरा एक लाइन ये कहना था कि अगर पुलिस खुद अपनी पीसी ले लेती, अगर आज दोपहर को ले लेती, 4 बजे ले लेती, 5 बजे, तो आपने तय कर लिया कि आप एफआईआर दर्ज करेंगे, तो आप मीडिया में

0: something more important.
1: Who's objecting?
2: Shyama Prasad Mukherjee, the founder of Bharatiya Janata Party.
0: I don't want to interrupt. This was my...
2: A minister in...
0: Again, we are going off the track. Okay. Let me just complete a fact.
1: 10 seconds only, then I want to move on.
0: Let me complete a fact. The fact of the matter is that there is a letter of Mr. Nehru saying that, yes, the Muslims will be irritated. And therefore, we are going to restrict this to do. He did not even want it as a national song, point number one. Point number two, today Parliament has formally given a resolution and an act in 150 years of Vande Mataram. Will a parliamentary resolution dominate or their parivarik resolution?
1: Okay, look, ultimately, I think let the people decide what they make of these impulses. I want to go to another big story, which is that of what happened in Jaipur. And I want to bring you in on this, Anish. What happened with Ashutosh Ranka? Basically, a team of the CJP had gone there to inspect a village school. And they were beaten up. Now, there are visuals which show that there are a group of people who are chasing them. They're pushing them out of that village. They're pushing them away from the school. And a couple of vehicles have also been damaged. First, let's listen in to some of the reactions that we got from there, from Ashutosh Ranka and from some of the locals.
3: स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है. मेरे खुद का रेखा जी भी उस वीडियो में है. पिछले साल भी हम निरीक्षण करने गए थे. भैंसों के तबेले में ये स्कूल चल रहा है. वहां पे हम लोग निरीक्षण करने पहले पहुंचे. उसके पहले ही वहां पर उनके लोग भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे. हमारे वॉलंटियर्स के साथ पहले मारपीट की गई. मीडिया के सभी साथी वहां पर मौजूद थे. पुलिस को इत्तला की गई. उसके बाद वहां पर हम गए हैं.
4: हमारे स्कूल के लिए 12 लाख पास हो चुके हैं. ऐसी पार्टी या कोई ऐसा, हम स्कूल के मुद्दे को नहीं बढ़ाना चाहते, राजनीतिक मुद्दा नहीं बढ़ाना चाहते. हमारे स्कूल के लिए पैसा पास हो चुका है और हम ग्रामीण सक्षम है, हम बढ़ा लेंगे स्कूल. हमने पहले मंदिर बनाया था, जो शिक्षा का मंदिर है वो भी बना लेंगे. हम किसी पार्टी से, जनता उससे, कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई समर्थक नहीं चाहिए.
5: विरोध हम दूसरी पार्टी को, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी को नहीं दसने देंगे. यहाँ पर हम पूरा ही गांव हमारा कांग्रेस और बीजेपी है ठेठ से, बस यही बात है. और उन्होंने तो आके लोगों, हमारे लोग तो अभी बाहर नहीं निकली है, सब अंदर बैठ रही है डर की मारी.
1: So the villagers are saying that they thought these CJP people were going to break their school, so they beat them up.
6: So let me tell you three things. First, I think it's incredibly sad that state governments in this country are more afraid of citizens auditing schools than the fact that there is no running water in those schools, that girls can't use a bathroom in those schools, that children are being forced to clean those schools. USID plus data says 97% of schools have running water. Clearly, that self-reported data is not accurate. Audits have been stopped by this government. So citizens have been pushed to act where the government has failed to provide data. Now the second problem over here is, if the government believes that there is a challenge and we do not want people entering schools, there's a legitimate fear here. Agreed. Introduce alternative mechanisms. You were so quick to introduce a circular saying nobody should go to the schools. Did you announce an audit? Did you announce that work will be done in those schools? How low can you stoop that when people point out a problem, you shut down their voice? That is the problem with the government currently. And the final question is, when there is a citizen audit taking place, law and order is the responsibility of the government. How is it that two groups, both sides might be wrong? I will concede that as well, even though Ashutosh might be my friend. Both sides might be wrong. What are the police doing? Are they watching and being mute spectators? How can stones be hurled? Is this not a law and order failure? Agitational politics is never the solution. Agitational politics must be the last resort. But unfortunately, we are being forced to get to the last resort time and again. Rahul Gandhi has to go sit. The leader of the opposition should have to go sit at a police station for an FIR to be filed. The basic right of a citizen. Imagine if that is the case in Delhi. What is the case in Bihar?
1: Sameer ji, ab kya hoga? Kyunki ab to Ashutosh Ranka aur Abhijit Dipke ne aaj video dala hai. Unhone to kaha hai ki 48 ghante mein agar sabko arrest nahi kiya aur school nahi acche se bana to wo khud पहुंच जाएंगे राजस्थान.
7: देखिए, मुझे लगता है अगर अभिजीत दिपके, आशुतोष राका या सौरभ दास को अगर लगता है कि एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर हो, तो एक सिस्टम होता है ना. आप एचआरडी मिनिस्टर को लिखते हैं, आप स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर को लिखते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, हमारे पास कुछ प्रपोजल है एजुकेशन को लेकर, आपकी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, हम कुछ में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वी विल डिस्कस इट कि कैसे हम कॉन्ट्रीब्यूट करें, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्या हमारे पास टीम है, फाइनेंशियली हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं. हम एक गाँव गोद में लेंगे, वहाँ के दो स्कूल को बेहतर करेंगे. हम एक शहर को गोद में लेंगे, एक शहर में जितने स्कूल उसको हम बेहतर करेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे. ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप संभाजी नगर के स्कूल में जाओ, उसके बाद सीधे उड़ के आप राजस्थान में चले जाओ, उसके बाद बंगाल के किसी स्कूल में चले जाओ कि सरकार क्या कर रही है. भाई, आप डिसाइड तो करोगे ना कि कैसे करना है, आपकी पॉलिसी क्या है, क्या करना चाहते हो आप.
1: बट मैंने बोला कि दिस इज अ वेरी सरकारी अप्रोच ना. जब तक आप, मतलब जो कहते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो लेकिन, तब आपको करना ही
7: पड़ेगा. लेकिन आप जाना तो सरकार के साथ ही पड़ेगा ना. चेंजेस कौन करेगा, स्कूल को बेहतर कौन करेगा?
1: तो यार, तू टॉयलेट
7: गवर्नमेंट बनाएगी, अच्छे बोर्ड्स, अच्छे चेयर्स, अच्छा भोजन ये सरकारी देगी ना. अभिजीत दिपके तो देंगे नहीं.

0: जनता पार्टी तो देगी नहीं, सरकार ही करेगी ना। तो सरकार से डायलॉग तो स्टार्ट करोगे आप। सरकार अगर आपसे बात नहीं करती तो आप उसमें जाइए, आप एजुकेशन सेक्रेटरी से मिलिए, स्टेट में जो एजुकेशन सेक्रेटरी आप उससे मिलिए, आप टीचर्स एसोसिएशन से मिलिए कि हम आपके स्कूल बेहतर करना चाहते हैं, आप उनको लेटर लिखिए। आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए?
1: Okay,
0: आप 10 लड़के लेकर चले जाते हो किसी स्कूल
2: में, कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल ओवर द कंट्री, नॉट इन राजस्थान, इज पैथेटिक। एवरीवन नोज इट, व्हाट इज द व्हाट काइंड ऑफ फूड,
1: बट दैट्स व्हाई देन दे आर आस्किंग नो आशुतोष रंका, व्हाई आरंट यू गोइंग टू पंजाब, पंजाब में देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल,
3: गो टू पंजाब,
1: बट ही हैजंट गॉन, आई मीन ही डिडंट गो टू झारखंड।
3: आई हैव वन सिंपल क्वेश्चन,
1: इन पर्सन
3: I agree with you completely. But what do you do when somebody else is not doing their job? You do it. Please, I encourage BJP workers to go to Jharkhand and go to those schools.
1: Arey, but they are a pressure group. Why aren't they pressuring Jharkhand? You have been agreeing with me since Jharkhand also, Anish. But wo aa karke chala gaya. By the way, the High Court has cancelled all the decisions that were taken by Jharkhand government. So you still have time. Abhijit Dibke hopefully now has recovered from his typhoid/cholera/whatever it was that he was suffering from. He should now go to Jharkhand because those kids are going to sit on protest again. Everything they fasted for 26 days, it's all gone down the drain.
3: But the same question should be asked of JP Nadda ji. He should go to Jharkhand. The Prime Minister should go to Jharkhand.
1: Okay.
3: The Home Minister should go to Jharkhand. This kind of tutu-meme politics is not very relevant.
2: Nobody when the question
3: is, Prime Minister should go to Manipur.
1: Okay, tutu-meme is
3: only, I don't believe this.
1: I don't believe in tutu-meme either. I am just saying, through a political lens, do people not see a mismatch in what they are saying and what they are practicing?
3: The first thing I told you is
4: now,
3: last
4: he's got a third.
1: Okay.
4: Let me at least come in a little bit. First of all, I am very happy for citizens' audits to be done. I think it is in a democracy incumbent. Schools actually do have a system where parents and teachers form an association, where parents have an institutional approach towards seeing the state of the school and running the affairs of the school. So I don't think, Anish, because you know when you graduate from foreign degrees, etc., etc., you perhaps don't know how Indian systems work. And Abhijit has also studied abroad only.
2: Rahul also studied
4: schools. So Rahul has also studied abroad. Abhijit has been able to manage an education abroad, which I have not been able to. That's good. But they don't know about the parent-teacher association system. It is meant for this. So still, parents ko bulate. Anyway, and parents are the biggest stakeholders. I mean, concerned to Abhijit Dibke or me who has no children. I'm sure the parents of those school children are more concerned that school mein pankha hai, light hai, dustboard hai, sab cheez hai. Secondly, I did not know Anish is sitting as spokesperson not of NCP Sharad Pawar ke to nahi hai, CJP ke bhi nahi hai.
3: That I have to correct you firstly on national television, don't make such claims because you might have had to leave your job because of many reasons. I thankfully still have my job.
1: Okay, finish. Yes.
4: He is the spokesperson of SCJP. You know what is SCJP? You don't know?
1: No.
4: Selective Cockroach Janata Party. Matlab, aapko pata hai kya hai? मैं स्कूल में गया, यहाँ पे एकदम ऐसे जयपुर राजस्थान में मैंने एंट्री की, वहाँ के सारे स्कूल मुझे दिखे, ऑडिट करने में चला गया, अच्छी बात है। फिर एक बगल का स्टेट है पंजाब, वहाँ पे तो जाना ही नहीं है। फिर क्या होता है कि मैं थोड़ा सा इधर उधर उधर उधर जा रहा हूँ, अच्छा मैं चला गया वहाँ पे आंध्र प्रदेश चला गया, एनडीए स्टेट है, बट तेलंगाना नहीं जाना है। तो आई एम जस्ट वंडरिंग दैट व्हेन द राजनीतिक गोत्र तेलंगाना का बदलेगा, जब राजनीतिक गोत्र बदलेगा तब ये जाएंगे वहां पे सिटीजन ऑडिट, तब शुरू होगा, अच्छी बात है। थर्डली मेरा सिर्फ इनसे इतना एक सवाल है कि ये 250 स्टूडेंट्स 250 गूंस को लेकर जाते हैं और वहां की महिला जो बोलती है कि डोंट अटैक माई स्कूल, आई फेल्ट स्कैर्ड दैट दिस 250 गून्स हैव कम, सो शी इज नॉट सिटीजन, द 250 गून्स आर सिटीजन्स। ओके, फाइनली आपने वो वीडियो देखा है अभिजीत दिपके का? अभिजीत दिपके महाराष्ट्र के एक स्कूल में गए, लातूर में शायद, वहां पे कैमरा रेडी, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, बच्चे खाना खा रहे हैं, मैंने इन बच्चों को खाना दे दिया है, मैं इनका सुधार कर रहा हूँ, वहां से आवाज आई एक गांव वाले की, ये बच्चे स्कूल के नहीं हैं। अभिजीत दिपके वो मुए वो चलता है ना बैकग्राउंड में, मुए हो गया उनका।
1: चलो शहजादा,
4: तो मतलब कि इतना बड़ा फ्रॉड।
1: ओके,
3: पर अगेन ना द प्रॉब्लम
1: इज शहजादा हैज ऑलरेडी गिवन अस अ यू नो,
3: आई एम कंसर्नड अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द स्कूल, वी आर नॉट कंसर्नड अबाउट द फैक्ट दैट पेरेंट टीचर्स एसोसिएशंस डू नॉट हैव have the power to question these authorities in the school. Mm. We do not have a problem with the fact that unspeakable amounts of corruption is the reason for

0: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
1: Launch control, 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
3: This car makes no sense, yet it makes every sense.
4: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
2: Your friend said, "Yeah, Lily." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
5: Across the country.
6: The political row over Vande Mataram is intensifying, with the Congress and the BJP locked in a war of words. Congress's decision to sing only first two stanzas at its events has drawn sharp BJP criticism. The Home Minister has slammed the Congress for the decision, while the Defence Minister, Rajnath Singh, has called it a grave matter of constitutional concern. Congress leaders are defending this move, citing the 1937 resolution. The Karnataka Home Minister, Priyank Kharge, had said that in 1937, Gandhi, Patel, Nehru, Netaji Bose and even Tagore deliberated on which portions of Vande Mataram should be sung publicly and why. Meanwhile, the Modi government is taking the full redemption to university campuses. Here are some political reactions that came throughout the day.
7: दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया. जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते. मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया, और यह ऐतिहासिक निर्णय.
8: कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है. भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है. यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है, और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है. वंदे मातरम का विरोध करके कांग्रेस ने अपने नासमझी भरे खतरनाक इरादों को देश के सामने बता दिया है.
9: 1937 के अधिवेशन में जब इसको शामिल किया गया, ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर शामिल किया गया. सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको चिट्ठी लिखकर सलाह मांगी और उन्होंने सलाह के ऊपर इसको शामिल कराया, और उन्होंने ही उसमें से जितना पार्ट था वो तय किया था. सरदार पटेल भी उस अधिवेशन में थे, तो उनके बारे में इनकी क्या राय है? चूँकि बाकी लोगों के बारे में तो ये बोलते रहते हैं, उनके बारे में बताएं क्या राय है. हम तो अपने पुरखों की विरासत को लेकर चल रहे हैं, इनको तो नया नया प्रेम जागा है. और जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे उस समय.
10: कांग्रेस से 1937 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे तमाम लोग मौजूद थे, और जिन्होंने ये तय किया था कि सिर्फ दो स्टेंजा ही पढ़ा जाएगा उसका. तो इसलिए उस ये हम लोग ने तय किया कल वर्किंग कमेटी में, कांग्रेस अपने कार्यक्रम में जो परंपरा हमारी चली आ रही है 90 सालों से, हम उस परंपरा के अनुसार हम इस गीत को गाएंगे.
11: हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम गाते गाते दम तोड़ दिए थे. आप लोग कहाँ थे? इतने साल आप लोग भी यही गाना गाए थे. 12 साल से आप हुकूमत में बैठे, आपने भी यही गाना गाए थे रातों रात। आप याद आ गए, जो आदमी लोग पार्लियामेंट में आ नहीं सकते, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे सकते, बच्चों पर आपकी ताकत लाद के आप उनको पिटवाते हैं, आप हमें समझा रहे हैं कि हम क्या चीज है।
6: And amid fierce political contest over Vande Mataram, the veteran actor Sharmila Tagore has weighed in, saying that she supports singing of the first two stanzas of Vande Mataram. Her argument is that while those opening verses are inclusive and capable of bringing together people of all faiths, the later stanzas with their religious imagery may not be equally acceptable to everyone in a country as diverse as India. However, actor and BJP MP Kangana Ranaut has now responded, saying that Sharmila Tagore's understanding of art and poetry is limiting. Kangana argues that Vande Mataram is inseparable from India's freedom struggle and should be viewed as a unifying national symbol.
12: मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफ़ी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मैनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मैनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें All the gods are mentioned by name. तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चलें तो पहला टू टैंसा इज वेरी गुड।
13: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose.
6: Hello and welcome. You're watching NDTV with me, Tanisha Avasthi. Let's get a quick check of all the headlines that we're tracking at this hour. Delhi Police register FIR against unknown person in the case of alleged pellet gun used in Delhi on July 20 protest. This after Rahul Gandhi sat on dharna for over 5 hours. The BJP has accused the Congress MP of indulging in cheap politics. In Rajasthan, the CJP members were chased out of the village, and this happened in Jaipur, where members of the Kokra Janta Party were attacked during a visit to the government primary school. Members have alleged that the government school had been operating from a buffalo shed, and the CJP has now blamed the alleged BJP goons for the violence. Home Minister Amit Shah has taken a dig at the Congress party over Vande Mataram. He says that it is unfortunate that despite independence, the song isn't accepted the way it should have been. Hyderabad's deadly Aston Martin crash. The son of Rajya Sabha Member of Parliament has been booked after a 26-year-old woman was killed. The MP's son is out on bail now.

0: Ranchi that is refusing to bow down, though the government has announced cancellation of examination and the Ranchi High Court to stayed the cancellation. So that has now actually turned into a legal battle which will be fought in the High Court. But today on the streets of Ranchi and Giridi, the scuffle. At Ranchi, you had a scuffle between the students and the police, and then Giridi, it was a scuffle between the JMM workers and the protesting students.
1: All right, Prabhakar, thank you very much for getting us those details, keeping a very close watch on that story. Meanwhile, we move on to some other political developments that we are tracking. A political showdown happened in the national capital today with Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra sitting on a dharna outside the DCP office at the Parliament Street in the national capital. Rahul Gandhi had accused Delhi police of refusing to register an FIR over the pellet gun injury that was suffered by a student protesters. His name is Sahil, and this happened during the July 20th protest. Now, Rahul says that an FIR must be filed, a judicial inquiry must be conducted, and that action should be taken against those responsible. He has said that he will not leave until the FIR had registered, which eventually was registered by the Delhi police after 5 hours of dharna that was staged by Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, and other Congress workers. Now, and while all of this was happening, the BJP has questioned Rahul Gandhi and has accused him of disrespecting the rule of law and spreading anarchy. It was Union Minister JP Nadda taking the charge, saying that Rahul is indulging in cheap politics and that the Supreme Court has already ordered for a probe.
2: Delhi police ne kaha ki humne charre nahi chalaye. To ek hi sawal hai. Agar aapne nahi chalaye to kisi ne to ye charre chalaye honge. शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज कीजिए।
3: आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है।
4: गवर्नमेंट FIR फाइल नहीं कर रही, जिसके शरीर में सब जो पैलेट बुलेट्स हैं, छर्रे हैं, वो अभी है। और गवर्नमेंट ने कहा था जो लोग गलती किए हैं उन पर एक्शन लेंगे, लेकिन अब तक FIR किसी के खिलाफ फाइल नहीं किए, इसीलिए राहुल जी और प्रियंका जी वहाँ पर धरना बैठी हैं। गवर्नमेंट जो कहती है वो करती नहीं, आखिरी में हमको ऐसे स्टेप लेना पड़ता है लोगों के लिए, छात्रों के लिए, हम वो स्टेप ले रहे हैं।
5: जो साहिल लोचब हैं, जिसका शरीर में छर्रे के निशान दिखाए आप सबको राहुल जी ने, कि अब FIR होगी, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसने आदेश दिए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजनीतिक आदेश किसने दिए थे पैलेट गन्स चलाने, कुछ नहीं हुआ, वो भी इंतजार चलती रही। आज सुबह से अब इंतजार कर रहे हैं डीसीपी ऑफिस के बाहर धरना देके राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कि FIR होगी। 6.5 घंटे होने आए हैं, FIR नहीं कर रहे। पुलिस वाले कह रहे हैं कि ऊपर से दबाव है। ऊपर से मतलब किसका दबाव है? जय शाह का है, अमित शाह का है, किसका है?
1: From the national capital, let's move on and tell you what happened in Rajasthan today. Tensions erupted in Jaipur, where in what is being billed as a visit to inspect the state of a government primary school descended into an ugly confrontation. This after the members of the Kokra Janata Party who had arrived to assess the condition of the school were allegedly stopped and confronted with the situation escalating into an attack on the visiting team. Stones were reportedly pelted at CJP volunteers, the window of their vehicle was smashed, and even several members of the team were allegedly assaulted. The CJP co-convener Ashutosh Ranka has alleged that the attackers were goons and claimed that a number of volunteers, including women workers, sustained injuries in the clash. But at the heart of the controversy is a claim that the government school was being inspected, was allegedly functioning out of a buffalo shed. Now, this is an allegation that raises uncomfortable questions, of course, but about the condition of the basic public infrastructure and the quality of the facilities being provided to children. Well, the CGP says that its volunteers had gone to spot precisely to document these things and to question the conditions. Instead, the inspection itself allegedly became a flashpoint with the team facing resistance and violence. The CGP says that its School Theek Karo campaign is a nationwide exercise and its stated objective is to inspect government schools and highlight gaps in the basic infrastructure. But the political question that everybody is still asking is why does it that this campaign appear to be generating particularly sharp confrontations in the BJP ruled states?
6: Kokra Janata Party's co-convener Ashutosh Ranka made a plan to visit a school in Rampura Kaurpura village of Jaipur. It is nearly around 5 kilometers from Jaipur main city, but the villagers has opposed their visit. They have protested against their visit. The villagers said that we don't want any outsider to come our village, and especially the people who has claimed against the Ram, against Hindutva, who has put its slogans against Hindutva, against Ram, and who has abused Prime Minister's mother. So they were just saying that we are the villagers, we are incapable of making school in the village. So they were just protesting against their visit. And when the team of Kokra Janata Party, Ashutosh Ranka, arrived here, they have just stone pelted on them. They have made them run to outside from the village, and few Kokra Janata Party activists, few workers have been injured. Here's a girl with me. All of you have been injured?
7: Ji sir. Yes sir.
6: आप लोगों को चोट भी आई है, आपके साथियों को चोट आई है?
8: हमारे साथियों को चोट आई है जी, हम ठीक है अभी के लिए, हम अपने साथियों के साथ ही
6: हैं। ओके, सो यू नो फ्यू वर्कर्स हैव मैनेज्ड टू रीच द विलेज, सो दे ट्राई टू रश देम आउटसाइड द विलेज, एंड दिस इज रामपुरा कवरपुरा विलेज. द स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ऑफ रामपुरा कवरपुरा इज रनिंग इन अ काउ शेड सिंस अ ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर हाईकोर्ट हैज पास एन ऑर्डर दैट नो स्कूल वुड बी परमिटेड टू रन in any kind of dilapidated building. You can see this is a Kokra Janata Party's worker, and you can see his hand, all he has got those injuries on the hand and the neck and on the foot, and they are just saying that we are doing nothing wrong.
9: भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है, लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है. ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है. डेढ़ साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है. मेरे एक साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का. सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था. पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के. हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको भी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं. पुलिस पूरी तरह गायब थी. आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है. मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है. 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा.
1: The political row over Vande Mataram is intensifying, with the Congress and the BJP locked in a war of words. Congress's decision to sing only first two stanzas at its events has drawn sharp BJP criticism. The Home Minister has slammed the Congress for the decision, while the Defence Minister, Rajnath Singh, has called it a grave matter of constitutional concern. Congress leaders are defending this move, citing the 1937 resolution. The Karnataka Home Minister, Priyank Kharge, had said that in 1937, Gandhi, Patel, Nehru, Netaji Bose and even Tagore deliberated on which portions of Vande Mataram should be sung publicly and why. Meanwhile, the Modi government is taking the full redemption to university campuses. Here are some political reactions that came throughout the day.
10: दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया. जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते. मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया और यह ऐतिहासिक निर्णय.
11: कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है. भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है. यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है. वंदे मातरम का विरोध करके कांग्रेस ने अपने नासमझी भरे खतरनाक इरादों को देश के सामने बता दिया है.
12: 1937 के अधिवेशन में जब इसको शामिल किया गया, ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर शामिल किया गया. सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको चिट्ठी लिखकर सलाह मांगी और उन्होंने सलाह के ऊपर इसको शामिल कराया और उन्होंने ही उसमें से जितना पार्ट था वो तय किया था. सरदार पटेल भी उस अधिवेशन में थे तो उनके बारे में इनकी क्या राय है, चूँकि बाकी लोगों के बारे में तो ये बोलते रहते हैं, उनके बारे में बताएं क्या राय है. हम तो अपने पुरखों की विरासत को लेकर चल रहे हैं, इनको तो नया नया प्रेम जागा है. और जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे उस समय.
13: कांग्रेस से 1937 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे तमाम लोग मौजूद थे और जिन्होंने ये तय किया था कि सिर्फ दो स्टेंजा ही पढ़ा जाएगा उसका. तो इसलिए उस ये हम लोग ने तय किया कल वर्किंग कमेटी में, कांग्रेस अपने कार्यक्रम में जो परंपरा हमारी चली आ रही है 90 सालों से, हम उस परंपरा के अनुसार हम इस गीत को गाएंगे.
14: हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम गाते गाते दम तोड़ दिए थे. आप लोग कहाँ थे? इतने साल आप लोग भी यही गाना गाए थे. 12 साल से आप हुकूमत में बैठे, आपने भी यही गाना गाए थे. रातों रात आप याद आ गए. जो आदमी लोग पार्लियामेंट में आ नहीं सकते, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे सकते, बच्चों पर आपकी ताकत लाद के आप उनको पिटवाते हैं, आप हमें समझा रहे हैं कि हम क्या चीज़ है.
1: And amid fierce political contest over Vande Mataram, the veteran actor Sharmila Tagore has weighed in, saying that she supports singing of the first two stanzas of Vande Mataram. Her argument is that while those opening verses are inclusive and capable of bringing together people of all faiths, the later stanzas with their religious imagery may not be equally acceptable to everyone in a country as diverse as India. However, actor and BJP MP Kangana Ranaut has now responded, saying that Sharmila Tagore's understanding of art and poetry is limiting. Kangana argues that Vande Mataram is inseparable from India's freedom struggle and should be viewed as a unifying national symbol.
15: मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड. नॉट मैनी गॉड्स. और वंदे मातरम के एक जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मैनी गॉड्स. आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम. तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है. तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टूटा

0: Launch control, 0 to 100.
1: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
2: This car makes no sense, yet it makes every sense.
1: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi. Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
3: Across the country.
4: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Yeah. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored.
5: The political row over Vande Mataram is intensifying, with the Congress and the BJP locked in a war of words. Congress's decision to sing only first two stanzas at its events has drawn sharp BJP criticism. The Home Minister has slammed the Congress for the decision, while the Defence Minister, Rajnath Singh, has called it a grave matter of constitutional concern. Congress leaders are defending this move, citing the 1937 resolution. The Karnataka Home Minister, Priyank Kharge, had said that in 1937, Gandhi, Patel, Nehru, Netaji Bose and even Tagore deliberated on which portions of Vande Mataram should be sung publicly and why. Meanwhile, the Modi government is taking the full redemption to university campuses. Here are some political reactions that came throughout the day.
6: दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया. जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते. एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया और यह ऐतिहासिक निर्णय.
7: कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है. भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है. यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है, और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है. वंदे मातरम का विरोध करके कांग्रेस ने अपने नासमझी भरे खतरनाक इरादों को देश के सामने बता दिया है.
8: 1937 के अधिवेशन में जब इसको शामिल किया गया, ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर शामिल किया गया. सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको चिट्ठी लिखकर सलाह मांगी और उन्होंने सलाह के ऊपर इसको शामिल कराया, और उन्होंने ही उसमें से जितना पार्ट था वो तय किया था. सरदार पटेल भी उस अधिवेशन में थे, तो उनके बारे में इनकी क्या राय है? चूंकि बाकी लोगों के बारे में तो ये बोलते रहते हैं, उनके बारे में बताएं क्या राय है. हम तो अपने पुरखों की विरासत को लेकर चल रहे हैं, इनको तो नया नया प्रेम जागा है. और जिस मुस्लिम तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे उस समय.
9: कांग्रेस से 1937 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे तमाम लोग मौजूद थे, और जिन्होंने ये तय किया था कि सिर्फ 2 स्टेंजा ही पढ़ा जाएगा उसका. तो इसलिए उस ये हम लोग ने तय किया कल वर्किंग कमेटी में, कांग्रेस अपने कार्यक्रम में जो परंपरा हमारी चली आ रही है 90 सालों से, हम उस परंपरा के अनुसार हम इस गीत को गाएंगे।
10: हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम गाते गाते दम तोड़ दिए थे, आप लोग कहाँ थे? इतने साल आप लोग भी यही गाना गाए थे, 12 साल से आप हुकूमत में बैठे, आपने भी यही गाना गाए थे, रातों रात आप याद आ गए। जो आदमी लोग पार्लियामेंट में आ नहीं सकते, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे सकते, बच्चों पर आपकी ताकत लाद के आप उनको पिटवाते हैं, आप हमें समझा रहे हैं कि हम क्या चीज़ है।
5: And amid fierce political contest over Vande Mataram, the veteran actor Sharmila Tagore has weighed in, saying that she supports singing of the first two stanzas of Vande Mataram. Her argument is that while those opening verses are inclusive and capable of bringing together people of all faiths, the later stanzas with their religious imagery may not be equally acceptable to everyone in a country as diverse as India. However, actor and BJP MP Kangana Ranaut has now responded, saying that Sharmila Tagore's understanding of art and poetry is limiting. Kangana argues that Vande Mataram is inseparable from India's freedom struggle and should be viewed as a unifying national symbol.
11: मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स,

0: और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स. आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम. तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है. तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू टैंसा इज वेरी गुड.
1: A world of questions, ideas that challenge the ordinary, conversations that connect countries and cultures, where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.

0: Delhi police of refusing to register an FIR over the pellet gun injury that was suffered by a student protesters. His name is Sahil, and this happened during the July 20th protest. Now, Rahul says that an FIR must be filed, a judicial inquiry must be conducted, and that action should be taken against those responsible. He has said that he will not leave until the FIR had registered, which eventually was registered by the Delhi police after 5 hours of dharna that was staged by Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, and other Congress workers. Now, and while all of this was happening, the BJP has questioned Rahul Gandhi and has accused him of disrespecting the rule of law and spreading anarchy. It was Union Minister JP Nadda taking the charge, saying that Rahul is indulging in cheap politics and that the Supreme Court has already ordered for a probe.
1: Delhi police ne kaha ki humne charre nahi chalaye. To ek hi sawal hai. Agar aapne nahi chalaye to kisi ne to ye charre chalaye honge. शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए।
2: आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हट योग को दर्शाता है और हट योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है।
3: गवर्नमेंट एफआईआर फाइल नहीं कर रही, जिसके शरीर में सब जो पैलेट बुलेट्स हैं, छर्रे हैं, वो अभी है। और गवर्नमेंट ने कहा था जो लोग गलती किए हैं उन पर एक्शन लेंगे, लेकिन अब तक एफआईआर किसी के खिलाफ फाइल नहीं किए, इसीलिए राहुल जी और प्रियंका जी वहाँ पर धरना बैठी है। गवर्नमेंट जो कहती है वो करती नहीं, आखिरी में हमको ऐसे स्टेप लेना पड़ता है लोगों के लिए, छात्रों के लिए, हम वो स्टेप ले रहे हैं।
4: जो साहिल लोचव हैं, जिसका शरीर में छर्रे के निशान दिखाए आप सबको राहुल जी ने, कि अब एफआईआर होगी, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसने आदेश दिए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजनीतिक आदेश किसने दिए थे पैलेट गन्स चलाने, कुछ नहीं हुआ, वो भी इंतजार चलती रही। आज सुबह से अब इंतजार कर रहे हैं डीसीपी ऑफिस के बाहर धरना देके राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कि एफआईआर होगी। 6.5 घंटे होने आए हैं, एफआईआर नहीं कर रहे। पुलिस वाले कह रहे हैं कि ऊपर से दबाव है। ऊपर से मतलब किसका दबाव है? जय शाह का है, अमित शाह का है, किसका है?
0: From the national capital, let's move on and tell you what happened in Rajasthan today. Tensions erupted in Jaipur, where in what is being billed as a visit to inspect the state of a government primary school descended into an ugly confrontation. This after the members of the Kokra Janata Party, who had arrived to assess the condition of the school, were allegedly stopped and confronted with the situation escalating into an attack on the visiting team. Stones were reportedly pelted at CJP volunteers, the window of their vehicle was smashed, and even several members of the team were allegedly assaulted. The CJP co-convener Ashutosh Ranka has alleged that the attackers were goons and claimed that a number of volunteers, including women workers, sustained injuries in the clash. But at the heart of the controversy is a claim that the government school was being inspected, was allegedly functioning out of a buffalo shed. Now, this is an allegation that raises uncomfortable questions, of course, but about the condition of the basic public infrastructure and the quality of the facilities being provided to children. Well, the CGP says that its volunteers had gone to spot precisely to document these things and to question the conditions. Instead, the inspection itself allegedly became a flashpoint.

0: with the team facing resistance and violence. The CGP says that its School Theek Karo campaign is a nationwide exercise and its stated objective is to inspect government schools and highlight gaps in the basic infrastructure. But the political question that everybody is still asking is why does it that this campaign appear to be generating particularly sharp confrontations in the BJP ruled states?
1: Congress Janata Party's co-convener Ashutosh Raka made a plan to visit a school in Rampura Kaurpura village of Jaipur. It is nearly around 5 kilometers from Jaipur main city, but the villagers has opposed their visit. They have protested against their visit. The villagers said that we don't want any outsider to come our village, and especially the people who has claimed against the Ram, against Hindutva, who has put its slogans against Hindutva, against Ram, and who has abused Prime Minister's mother. So they were just saying that we are the villagers, we are incapable of making school in the village. So they were just protesting against their visit. And when the team of Cockroach Janata Party, Ashutosh Raka, arrived here, they have just stone pelted on them. They have made them run to outside from the village, and few Cockroach Janata Party activists, few workers have been injured. Here's a girl with me. All of you have been injured?
2: Ji sir. Yes sir.
1: आप लोगों को चोट भी आई है, आपके साथियों को चोट आई है?
3: हमारे साथियों को चोट आई है, हम ठीक है अभी के लिए, हम अपने साथियों के साथ
1: ही। ओके, सो यू नो फ्यू वर्कर्स हैव मैनेज टू रीच द विलेज, सो दे ट्राई टू रश देम आउटसाइड द विलेज, एंड दिस इज द रामपुरा कवरपुरा विलेज। द स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ऑफ रामपुरा कवरपुरा इज रनिंग इन अ काउ शेड सिंस अ ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर हाईकोर्ट हैज पास एन ऑर्डर दैट नो स्कूल वुड बी परमिटेड टू रन in the to run in the in any kind of dilapidated building. You can see this is a Cockroach Janata Party's worker, and you can see his hand, all he has got those injuries on the hand and the neck and on the foot, and they are just saying that we are doing nothing wrong.
4: भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है, लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। डेढ़ साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे एक साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के, हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा।
0: Political row over Vande Mataram is intensifying, with the Congress and the BJP locked in a war of words. Congress's decision to sing only first two stanzas at its events has drawn sharp BJP criticism. The Home Minister has slammed the Congress for the decision, while the Defence Minister Rajnath Singh has called it a grave matter of constitutional concern. Congress leaders are defending this move, citing the 1937 resolution. The Karnataka Home Minister Priyank Kharge had said that in 1937, Gandhi, Patel, Nehru, Netaji Bose and even Tagore deliberated on which portions of Vande Mataram should be sung publicly and why. Meanwhile, the Modi government is taking the full redemption to university campuses. Here are some political reactions that came throughout the day.
5: दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी, वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया।

0: किया और ये ऐतिहासिक निर्णय।
1: कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है। भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है। यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। वंदे मातरम का विरोध करके कांग्रेस ने अपने नासमझी भरे खतरनाक इरादों को देश के सामने बता दिया है।
2: 1937 के अधिवेशन में जब इसको शामिल किया गया, ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर शामिल किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको चिट्ठी लिखकर सलाह मांगी और उन्होंने सलाह के ऊपर इसको शामिल कराया और उन्होंने ही उसमें से जितना पार्ट था वो तय किया था। सरदार पटेल भी उस अधिवेशन में थे तो उनके बारे में इनकी क्या राय है, चूँकि बाकी लोगों के बारे में तो ये बोलते रहते हैं, उनके बारे में बताएं क्या राय है। हम तो अपने पुरखों की विरासत को लेकर चल रहे हैं, इनको तो नया नया प्रेम जागा है। और जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे उस समय।
3: कांग्रेस से 1937 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे तमाम लोग मौजूद थे और जिन्होंने ये तय किया था कि सिर्फ दो स्टेंजा ही पढ़ा जाएगा उसका। तो इसलिए उस ये हम लोग ने तय किया कल वर्किंग कमेटी में, कांग्रेस अपने कार्यक्रम में जो परंपरा हमारी चली आ रही है 90 सालों से, हम उस परंपरा के अनुसार हम इस गीत को गाएंगे।
4: हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम गाते गाते दम तोड़ दिए थे, आप लोग कहाँ थे? इतने साल आप लोग भी यही गाना गाए थे, 12 साल से आप हुकूमत में बैठे आपने भी यही गाना गाए थे, रातों रात आप याद आ गए। जो आदमी लोग पार्लियामेंट में आ नहीं सकते, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे सकते, बच्चों पर आपकी ताकत लाद के आप उनको पिटवाते हैं, आप हमें समझा रहे हैं कि हम क्या चीज है।
5: And amid fierce political contest over Vande Mataram, the veteran actor Sharmila Tagore has weighed in, saying that she supports singing of the first two stanzas of Vande Mataram. Her argument is that while those opening verses are inclusive and capable of bringing together people of all faiths, the later stanzas with their religious imagery may not be equally acceptable to everyone in a country as diverse as India. However, actor and BJP MP Kangana Ranaut has now responded, saying that Sharmila Tagore's understanding of art and poetry is limiting. Kangana argues that Vande Mataram is inseparable from India's freedom struggle and should be viewed as a unifying national symbol.
6: मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू टैंसा इज वेरी गुड।
5: विद दैट इट्स टाइम फॉर अस टू स्लिप इन अ वेरी क्विक ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, न्यूज़ एंड अपडेट कंटिन्यू ऑन द अदर साइड।
7: अ न्यू नेपाल, न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर रीजनल कोऑपरेशन। NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister Shishir Khanal, Finance Minister Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, Actor Manisha Koirala, एंड डॉक्टर राम

0: Revealing the lairs of the internet. Unmasking the dark side of the digital world. So what exactly is this hidden internet? How does it work? Who is using it? And how much of the crime happening here can investigators actually trace? Is the world beneath the internet that you know. The internet most people use every day is the World Wide Web. If a crime is committed there, investigators often have relatively straightforward methods to identify suspects. But much of the concern surrounding cybercrime today focuses on the dark net, which cannot be accessed through standard browsers like Chrome or Safari. It requires special software, such as the Tor, the Onion router. Just as an onion has many layers, users' identities are concealed behind multiple layers of routing and encryption. This anonymity is one reason the technology has attracted criminal misuse.
1: देखिए जो इंटरनेट है, वो एक तरह से आइसबर्ग है, जो उसका पोर्शन आप देखते हैं. जिसको हम सरफेस नेट बोलते हैं, वो लगभग 5% या 10% के बीच में है, जिसमें आपका सारा गूगल, सारा यूट्यूब, सारी टाइप की सरफेस वेबसाइट्स, ब्राउजिंग सब कुछ होता है. और इसके लिए कॉमन ब्राउजर्स जैसे क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह यूज़ होते हैं. लगभग 80% से ज़्यादा है इंटरनेट का वो पोर्शन जिसको हम डीप वेब बोलते हैं या डीप नेट बोलते हैं. डीप नेट वो पोर्शन ऑफ इंटरनेट है जिसके लिए आपको स्पेशल क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि लॉगिन, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, जिसमें आपके सारे इंश्योरेंस रिकॉर्ड, बैंकिंग रिकॉर्ड्स, ईमेल्स. इसके लिए भी आपको कोई स्पेशल ब्राउजर की ज़रूरत नहीं होती है. डार्क नेट वो लगभग 7 से 8% ऐसा पोर्शन ऑफ इंटरनेट है जिसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप का ब्राउजर चाहिए, जिसको हम द अनियन राउटर कहते हैं. टॉर, टॉर या द अनियन राउटर. क्यों उसको अनियन राउटर कहा जाता है? क्योंकि वो ब्राउजर आपकी एनोनिमिटी एंश्योर करता है.
0: एंड इट इज दिस एनोनिमिटी दैट मेक्स द डार्क नेट सो डिफिकल्ट टू पुलिस. अ यूजर्स रियल लोकेशन कैन बी कंसील्ड. The digital trail can pass through multiple countries before reaching its destination.
1: Tor में अगर कोई आपको मैसेज अपने नेबर को भी भेजना है जो आपके बगल में बैठा हुआ, तो वो 20 कंट्रीज के थ्रू हॉप ऑन होते हुए, जिसको हम कहते हैं मल्टी प्रॉक्सी, मल्टी प्रॉक्सी के प्रोसेस से आते हुए आपके नेबर के पास जाएगा, तो उसको बैक ट्रैक करना बहुत मुश्किल होगा. तो बैक ट्रैक करना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, इसीलिए इसको द अनियन राउटर कहते हैं.
0: बट व्हाट डज दिस हिडन वर्ल्ड लुक लाइक?
2: तो यहाँ पर लेफ्ट एंड सोल्ड, यहाँ पर सोल्ड कितना बता रहा है, लेफ्ट यूनिट मतलब ये सोल्ड हो
3: चुका,
2: सोल्ड हो चुका.
0: दिस इज दिलशान शेख, अ टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट सिंस चाइल्डहुड. He became deeply interested in understanding the internet. What started as curiosity eventually brought him onto the radar of cyber experts. Today he assists law enforcement as an ethical hacker. What Dilshan showed us on the dark net may surprise you.
2: इसमें से हम एक मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे आज और देखें कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ इजीली हमें अवेलेबल मिलेगी और हम किस तरीके से इजीली किसी का भी डेटा या कुछ भी चीज़ हम इजीली बाय कर सकते हैं. इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे जो लीक डेटाबेस होते हैं आईडी पासवर्ड के साथ, वो हम यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं. इनके नेटवर्क्स होते हैं, वहाँ पर ऑर्डर प्लेस हुआ, वो हिडन नेटवर्क है, वो एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं बेसिकली कि वो क्या कर रहा है बंदा, उनका नाम क्या है. यहाँ पर नाम जो होता है एक यूज़र आईडी के नाम पे होता है, एंड दैट्स ऑल. इसमें ना कोई केवाईसी होती है, ना कोई मेल दिया जाता है. आप एक नाम सेलेक्ट कर लीजिए और उससे पासवर्ड बना दीजिए, आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा.
3: पेमेंट कैसे होती है
2: इसमें? जो पेमेंट होता है वो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में होता है, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस के ऊपर, बिटकॉइंस वगैरह में. तो ये सारे लॉग्स, ये देखिए पेपल के लॉग्स है इसके अंदर. तो ये सारे लॉग्स होते हैं बैकएंड के, जो अटैकर के लिए, जो हैकर्स के लिए बहुत, जो स्कैमर के लिए बहुत यूजफुल होते हैं. तो ये सारा डेटा होता है, ये आईडी कार्ड्स है जो अवेलेबल है अलग अलग कंट्रीज के, जो यूज़ होता है. इसको फ्रॉड के तौर पर आप यूज़ कर लो, इसको सिम कार्ड निकालने के तौर पर यूज़ कर लो.
3: आधार
2: कार्ड एंड पैन कार्ड डॉक्यूमेंट ऑल वैलिड विद ऑल इन्फॉर्मेशन. एक यूजर आईडी में डालता हूँ,
3: मतलब आपका ईमेल,
2: हाँ यहाँ पर
3: अकाउंट, कब उसका पासवर्ड लीक हुआ है.
2: देखिए एक जगह ब्रीच हुआ है, अगर मुझे इनका, देखिए अभी यहाँ से पासवर्ड मुझे शो करना, मुझे सर्विस पाई करनी पड़ेगी, तो मुझे पासवर्ड भी मिल जाएगा. और डेफिनेटली उसे ये पता
3: तो
2: नहीं होगा,
3: लीक हो चुका है, तो आप
2: उसने पासवर्ड चेंज नहीं किया होगा इन शॉर्ट, तो आई कैन गेट एक्सेस टू द अकाउंट. एंड अराउंड 13 बिलियन अकाउंट इन अ लीक डेटाबेस. ठीक है,
3: तो ये बिलियन अकाउंट्स का लीक डेटाबेस इनके पास.
2: करेक्ट, अभी देखिए ये काउंटर फीडिंग नोट्स है, एचक्यू प्रिंट्स करके है नाम से. तो ये डिफरेंट सर्विसेज बेच रहे हैं. तो इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल. अभी फॉर एग्जांपल आपको सोशल मीडिया अकाउंट हैक करवाना है, तो ये एक एक्स वाई जेड वेबसाइट है, $100 ले रहा है, इंस्टाग्राम पे क्लिक करो,
3: टिकटॉक,
2: ठीक है. ये यहाँ पर अगर आपको अनोनमस नंबर्स वगैरह बाय करने हैं, जो भी सिम कार्ड्स वगैरह बाय करने हैं, तो ये नंबर्स मिलते हैं, जैसे कि टैक्स नाउ के अकाउंट है, जो टैक्स नाउ वहाँ पर अलग होता है, तो यहाँ पर मॉडर्ड मतलब किसी के नाम का आपको मिल जाएगा, जो आप यूजर आईडी पासवर्ड, एक किस्म का डिजिटल सिम ही बोल सकते हैं,
3: जो साइबर फ्रॉड के लिए क्रिमिनल
2: यूज करते हैं.
3: और ये कितने में बिक रहा है?
2: $10, मतलब इंडियन ₹700. इसके पीछे कौन है वो रिवील नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आइडेंटिटी होती है सिर्फ यूजर नेम होता है.
0: What Dilshan warns us about has recently happened with Bank of Baroda data. Bank of Baroda had to initiate a forensic investigation into a breach involving critical data, with reports of around 1 terabyte of data being leaked. The leaked material allegedly includes customer information, identity documents, loan papers, and internal audit reports. This incident adds to a series of cybersecurity breaches involving major Indian companies and institutions in recent months. Thousands of websites here openly operate as marketplaces for criminal activity. Transactions are conducted through cryptocurrency, making it difficult for law enforcement agencies to trace the people behind them. Maharashtra Cyber says its investigations reveal just how large this underground ecosystem can be.
3: Sir, ye screen pe hum kya dekh rahe hain is waqt?
4: Ma'am, screen pe aap dekh sakte hain ki live jo cyber attacks ho rahe hain across world. So you can see as of now total attacks which is happening currently across world, which is the number is reflecting on your screen, that is 10 crore 16 lakh 1,608 attacks are happening.
3: ये live feed इस वक्त
4: yes,
3: हम देख रहे हैं.
4: Yes.
3: यानी कि एक तरफ जिन countries में war छिड़ी हुई है या जो इसका target बन रहे हैं,
4: yes.
3: उसी समय में cyber attack भी
4: exactly.
3: उनपे किस तरह से हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं.
4: Different platforms है dark web पे. So these are the few platforms and what they are selling, drugs, carding detail, counterfeit currency. So these are the number of dark web listings. सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि drugs sale हो रहे हैं. Dark web immediately.

0: है कि उनके ईमेल्स को इजीली ट्रेस नहीं किया जा सकता है। जैसे आपको पता होगा कुछ सालों पहले जीमेल आउटलुक का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे और वो इजीली ट्रेस भी कर सकती थी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, बट नाउ दे आर यूजिंग द एनोनिमस ईमेल सर्विस विच इज अवेलेबल ऑन डार्क वेब। सो दिस इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। इसी के तरह कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है डार्क वेब पे जिसका इस्तेमाल करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं।
1: ओके, तो ये डार्क वेब नहीं है लेकिन डार्क वेब के फीचर
0: से जैसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है एक फीचर है इसके, इजीली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से डिकोड नहीं कर पाते इनके SMS।
2: For investigators, the challenge is not only identifying what is happening online, but finding the people behind it. This is a dark web chat room, where users operating under fake identities interact anonymously, often attempting to buy or sell illegal goods and services.
3: क्रिमिनल को अगर पकड़ना है तो क्रिमिनल के ऐसे सोचना चाहिए। उस हिसाब से हमें क्या करना है कि ऐसे ये जो चल रही है जो क्रिमिनल है तो हमने भी उस क्रिमिनल के जैसे मैंने चैटिंग स्टार्ट कर दी तो अगर यहाँ से मुझे कोई रिप्लाई देता है तो कौन, तो फिर मैं उसके साथ जेन्युइन चैट करूंगा।
1: आप उसके साथ यहाँ पे इंगेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि
3: वो कुछ डेटा उसका ओरिजिनल डेटा रिवील कर दे और उस अगर कोई भी अगर छोटी सी मिस्टेक वो कर दे तो फिर हम उस तक पहुँच सकते हैं। उनको भी मालूम है, क्रिमिनल को भी मालूम है कि हम ऐसे ऐसे चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम पकड़ा नहीं जाए, पर हमें भी उतना एडवांस टेक्नोलॉजी में जान के कि अगर उन्होंने टॉल भी यूज़ किया है तो वो टॉल में फिर जैसे मैंने बोला कि क्रिमिनल की सोच के जैसे हम देखेंगे
1: सोच रखनी
3: तो हाँ तो एटलीस्ट एक क्रिमिनल के पास अगर हमें जाना है तो उसे उसको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा।

0: In this underground marketplace, firearms, explosives, poison, and drugs are reportedly traded with few identity checks.
1: तो मैं गर्ल्स नॉर्मल सर्च किया और हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स यहाँ पे सामने आ गए. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एम्यूनिशन के, ड्रोन्स के, यूएवीज के, एक्सप्लोजिव्स के, गन्स के, नाइव्स. तो नॉर्मल मुझे सिर्फ बेसिक डिटेल डालनी है कि मेरा नाम क्या है. वो मैं गलत डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, जैकब डाल सकता हूँ, मेरा नाम कुछ और होगा.
2: और इसके साथ साथ जो पेमेंट मोड है वो क्रिप्टो है, तो ये ओवरऑल एक प्रोटेक्ट करता है क्रिमिनल को.
1: क्रिप्टो अपने आप में एक एड्रेस की तरह होता है. वो आपको एड्रेस से पता चलेगा उसके पीछे पर्सन कौन है. तो वॉलेट प्राइवेट वॉलेट हो सकते हैं, वो यूज कर रहा होगा, जिससे कोई टारगेट नहीं कर पाएगा.
2: पर यहाँ पे लोग स्कैम भी तो होते होंगे.
1: हाँ, होता है.
2: अगर वॉलेट लिंक किया तो स्कैमर्स तो भरे हुए हैं यहाँ पे.
1: हाँ,
2: अगर इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो
1: ऑब्वियसली. जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपको सर्विसेज मिलते हैं लाइक हिटमैन्स के, जो मोस्टली वो ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं. वो आपसे बस पैसा लेते हैं, स्कैम करते हैं, या फिर कुछ और, हम आपको अकाउंट्स बेचेंगे या कुछ आपको डेटा चाहिए तो आपसे वो डिटेल्स पहले ले लेंगे. हो सकता है कि वो आपके कंप्यूटर में भी एंटर कर जाएं किसी न किसी तरीके से, अगर आप प्रॉपरली वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं डार्क वेब को, टॉर को.

0: Is the dark net used only by criminals? No. Interestingly, technologies behind it were originally developed to help protect sensitive communications and support privacy. They have also been used by journalists, activists, and individuals in regions with limited freedom of expression. However, over time, with wider public access and the rise of cryptocurrencies such as Bitcoin, illegal marketplaces expanded rapidly. Today, investigators say a substantial portion of darknet activity is associated with unlawful trade and cybercrime.
1: कुछ साल पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। हमें पता चला कि अब जो है टेररिस्ट फिदाइन अटैक नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें उनके जान जाने की खतरा है। वो कह रहे हैं सबसे अच्छा अटैक है ड्रोन अटैक्स कीजिए। और उस ड्रोन में हल्का सा आरडीएक्स लगा दीजिए जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाए आफ्टर इट्स ऑपरेशन। पहले वो आरडीएक्स गिराए, फिर उसी आरडीएक्स से खुद भी डिस्ट्रक्ट सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाए। ये चैट फोरम में डिस्कस हो रही हैं ये बातें बाय सर्टेन एंटी नेशनल एलिमेंट्स। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड थ्रू डार्कनेट हु दीज एंटी नेशनल एलिमेंट्स आर। आफ्टर फ्यू मंथ्स ओनली ड्रोन अटैक स्टार्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड नाउ मोर।
2: किस साल की बात है सर?
1: ये मैं आपको 2019 की बता रहा हूँ। But now drone attacks are the norm. जैसे कि आप देख रहे हैं ज्यादातर wars भी
2: के जरिए
1: हमारे drone से हो रहे हैं।
3: This report has been an effort to make you aware of the risks associated with the dark net. Stay cautious. Avoid attempting to access unknown criminal marketplaces or suspicious online networks. Cyber criminals can target your devices, compromise your privacy, and steal your personal information. Stay alert, stay safe, and use the internet responsibly. I am Pooja Bharadwaj, and I filed this special report for NDTV.

0: वो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया और यह ऐतिहासिक निर्णय।
1: कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है। भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है। यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है, और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। वंदे मातरम का विरोध करके कांग्रेस ने अपने नासमझी भरे खतरनाक इरादों को देश के सामने बता दिया है।
2: 1937 के अधिवेशन में जब इसको शामिल किया गया, ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर शामिल किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको चिट्ठी लिखकर सलाह मांगी और उन्होंने सलाह के ऊपर इसको शामिल कराया और उन्होंने ही उसमें से जितना पार्ट था वो तय किया था। सरदार पटेल भी उस अधिवेशन में थे, तो उनके बारे में इनकी क्या राय है? चूँकि बाकी लोगों के बारे में तो ये बोलते रहते हैं, उनके बारे में बताएं क्या राय है? हम तो अपने पुरखों की विरासत को लेकर चल रहे हैं, इनको तो नया नया प्रेम जागा है। और जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे उस समय।
3: कांग्रेस से 1937 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे तमाम लोग मौजूद थे और जिन्होंने ये तय किया था कि सिर्फ दो स्टेंजा ही पढ़ा जाएगा उसका। तो इसलिए उस ये हम लोग ने तय किया कल वर्किंग कमेटी में, कांग्रेस अपने कार्यक्रम में जो परंपरा हमारी चली आ रही है 90 सालों से, हम उस परंपरा के अनुसार हम इस गीत को गाएंगे।
4: हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम गाते गाते दम तोड़ दिए थे। आप लोग कहाँ थे? इतने साल आप लोग भी यही गाना गाए थे। 12 साल से आप हुकूमत में बैठे, आपने भी यही गाना गाए थे। रातों रात आप याद आ गए। जो आदमी लोग पार्लियामेंट में आ नहीं सकते, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे सकते, बच्चों पर आपकी ताकत लाद के आप उनको पिटवाते हैं, आप हमें समझा रहे हैं कि हम क्या चीज़ है।
5: And amid fierce political contest over Vande Mataram, the veteran actor Sharmila Tagore has weighed in, saying that she supports singing of the first two stanzas of Vande Mataram. Her argument is that while those opening verses are inclusive and capable of bringing together people of all faiths, the later stanzas with their religious imagery may not be equally acceptable to everyone in a country as diverse as India. However, actor and BJP MP Kangana Ranaut has now responded, saying that Sharmila Tagore's understanding of art and poetry is limiting. Kangana argues that Vande Mataram is inseparable from India's freedom struggle and should be viewed as a unifying national symbol.
6: मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मैनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू स्टैंजा इज वेरी गुड।
7: अ न्यू नेपाल, न्यू possibilities. A new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanal, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, commerce, security, infrastructure, tourism, soft power. NDTV Anviksha, ideas across borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters. The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
8: So many attacks.
7: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
8: It's incredible.
7: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
8: Welcome to Left, Right and Center.
7: Hard facts.
8: War-struck country.
7: Hard questions.
8: In the Ukraine.
7: 30 years of trust.
9: In the Kargil area.
8: North Ukraine.
10: In France. In Italy.
8: At Srinagar. Vishnu Shom for NDTV.
7: Vishnu Shom. Only on NDTV.
11: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's...
5: Hello and welcome, you're watching NDTV with me, Tanisha Avasthi. Let's get a quick check of all the headlines that we're tracking at this hour. Delhi police register FIR against unknown person in the case of alleged pellet gun used in Delhi on July 20 protest. This after Rahul Gandhi sat on dharna for over 5 hours. The BJP has accused the Congress MP of indulging in cheap politics. In Rajasthan, the CJP members were chased out of the village, and this happened in Jaipur, where members of the Kakra Janta Party were attacked. During a visit to the government primary school, members have alleged that the government school had been operating from a buffalo shed, and the CJP has now blamed the alleged BJP goons for the violence. Home Minister Amit Shah has taken a dig at the Congress party over Vande Mataram. He says that it is unfortunate that despite independence, the song isn't accepted the way it should have been. Hyderabad's deadly Aston Martin crash. The son of Rajya Sabha member of parliament has been booked after a 26-year-old woman was killed. The MP's son is out on bail now. The MEA has denied political clearance for Telangana Chief Minister Revanth Reddy's United States visit. The centre has said that the proposed program is inappropriate to the Chief Minister's office. An FIR has finally been registered against teacher in Vishakhapatnam school after 6-year-old Pranay was scolded and slapped. He collapsed and died. The probe is underway and the post-mortem report is awaited. The parents, meanwhile, are demanding justice for their son. We are starting this edition with a breaking news that's just coming in. We learned that there has been a political confrontation that has erupted in Jharkhand, with protests over examinations taking an ugly turn in both Giridh and Ranchi as well. In Giridh, we learned that the JMM workers were allegedly assaulted. The students who had gathered at the Maidan there to burn an effigy of the Chief Minister Hemant Soren. The students were reportedly chased and then beaten, leading to a tense situation in the area. Now, a statement attributed to the JMM district president has also

0: questioned Rahul Gandhi and has accused him of disrespecting the rule of law and spreading anarchy. It was Union Minister J.P. Nadda taking the charge, saying that Rahul is indulging in cheap politics and that the Supreme Court has already ordered for a probe.
1: दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे, मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज कीजिए।
2: आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में DCP ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। DCP ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हट योग को दर्शाता है और हट योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है।
3: गवर्नमेंट FIR फाइल नहीं कर रही, जिसके शरीर में सब जो पैलेट बुलेट्स हैं, छर्रे हैं, वो अभी है। और गवर्नमेंट ने कहा था जो लोग गलती किए हैं उन पर एक्शन लेंगे, लेकिन अब तक FIR किसी के खिलाफ फाइल नहीं की है, इसीलिए राहुल जी और प्रियंका जी वहाँ पर धरना बैठी है। गवर्नमेंट जो कहती है वो करती नहीं, आखिरी में हमको ऐसे स्टेप लेना पड़ता है लोगों के लिए, छात्रों के लिए, हम वो स्टेप ले रहे हैं।
4: जो साहिल लोचब हैं, जिसका शरीर में छर्रे के निशान दिखाए आप सबको राहुल जी ने, कि अब FIR होगी, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसने आदेश दिए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजनीतिक आदेश किसने दिए थे पैलेट गन्स चलाने, कुछ नहीं हुआ, वो भी इंतजार चलती रही। आज सुबह से अब इंतजार कर रहे हैं DCP ऑफिस के बाहर धरना देके राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कि FIR होगी। 6.5 घंटे होने आए हैं, FIR नहीं कर रहे। पुलिस वाले कह रहे हैं कि ऊपर से दबाव है। ऊपर से मतलब किसका दबाव है? जय शाह का है, अमित शाह का है, किसका है?
0: From the national capital, let's move on and tell you what happened in Rajasthan today. Tensions erupted in Jaipur, where in what is being billed as a visit to inspect the state of a government primary school descended into an ugly confrontation. This after the members of the Kokra Janata Party, who had arrived to assess the condition of the school, were allegedly stopped and confronted with the situation escalating into an attack on the visiting team. Stones were reportedly pelted at CJP volunteers, the window of their vehicle was smashed, and even several members of the team were allegedly assaulted. The CJP co-convener Ashutosh Ranka has alleged that the attackers were goons and claimed that a number of volunteers, including women workers, sustained injuries in the clash. But at the heart of the controversy is a claim that the government school was being inspected, that was being inspected, was allegedly functioning out of a buffalo shed. Now, this is an allegation that raises uncomfortable questions, of course, but about the condition of the basic public infrastructure and the quality of the facilities being provided to children. Well, the CGP says that its volunteers had gone to spot precisely to document these things and to question the conditions. Instead, the inspection itself allegedly became a flashpoint with the team facing resistance and violence. The CGP says that its School Theek Karo campaign is a nationwide exercise and its stated objective is to inspect government schools and highlight gaps in the basic infrastructure. But the political question that everybody is still asking is, why does it that this campaign appear to be generating particularly sharp confrontations in the BJP ruled states?
5: Kokra Janata Party's co-convener Ashutosh Ranka made a plan to visit a school in Rampura Kaurpura village of Jaipur. It is nearly around 5 kilometers from Jaipur main city, but the villagers

0: have opposed their visit. They have protested against their visit. The villagers said that we don't want any outsider to come our village, and especially the people who has claimed against the Ram, against Hindutva, who has put its slogans against Hindutva, against Ram, and who has abused Prime Minister's mother. So they were just saying that we are the villagers, we are incapable of making school in the village. So they were just protesting against their visit. And when the team of Cockroach Janata Party, Ashutosh Raka, arrived here, they have just stone pelted on them. They have made them run to outside from the village, and few Cockroach Janata Party activists, few workers have been injured. Here's a girl with me. All of you have been injured?
1: Ji sir. यस सर,
0: आप लोगों को चोट भी आई है, आपके साथियों को चोट आई है?
2: जी, जी, साथियों को चोट आई है जी. हम ठीक है अभी के लिए, हम अपने साथियों के साथ ही.
0: ओके, सो यू नो फ्यू वर्कर्स हैव मैनेज्ड टू रीच द विलेज, सो दे ट्राई टू रश देम आउटसाइड द विलेज. एंड दिस इज रामपुरा कवरपुरा विलेज. द स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ऑफ रामपुरा कवरपुरा इज रनिंग इन ए काउ शेड सिंस अ ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर हाईकोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर दैट नो school would be permitted to run in the any kind of dilapidated building. You can see this is a Cockroach Janata Party's worker, and you can see his hand, all he has got those injuries on the hand and the neck and on the foot, and they are just saying that we are doing nothing wrong.
3: भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है, लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है. ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है. डेढ़ साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है. मेरे एक साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का. सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था. पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के, हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको भी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं. पुलिस पूरी तरह गायब थी. आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है. मदन दिलावर के कहने पर ये सब हुआ है. 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा.
4: Political row over Vande Mataram is intensifying, with the Congress and the BJP locked in a war of words. Congress's decision to sing only first two stanzas at its events has drawn sharp BJP criticism. The Home Minister has slammed the Congress for the decision, while the Defence Minister Rajnath Singh has called it a grave matter of constitutional concern. Congress leaders are defending this move, citing the 1937 resolution. The Karnataka Home Minister Priyank Kharge had said that in 1937, Gandhi, Patel, Nehru, Netaji Bose and even Tagore deliberated on which portions of Vande Mataram should be sung publicly and why. Meanwhile, the Modi government is taking the full redemption to university campuses. Here are some political reactions that came throughout the day.
5: दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी, वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया. जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते. मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया, और यह ऐतिहासिक निर्णय.
6: कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है. भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है, और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है. यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है. और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। वंदे मातरम का विरोध करके कांग्रेस ने अपने नासमझी भरे खतरनाक इरादों को देश के सामने बता दिया है।
7: 1937 के अधिवेशन में जब इसको शामिल किया गया, ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर शामिल किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको चिट्ठी लिखकर सलाह मांगी और उन्होंने सलाह के ऊपर इसको शामिल कराया और उन्होंने ही उसमें से जितना पार्ट था वो तय किया था। सरदार पटेल भी उस अधिवेशन में थे तो उनके बारे में इनकी क्या राय है, चूँकि बाकी लोगों के बारे में तो ये बोलते रहते हैं, उनके बारे में बताएं क्या राय है। हम तो अपने पुरखों की विरासत को लेकर चल रहे हैं, इनको तो नया नया प्रेम जागा है। और जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे उस समय।
8: कांग्रेस से 1937 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे तमाम लोग मौजूद थे और जिन्होंने ये तय किया था कि सिर्फ दो स्टेंजा ही पढ़ा जाएगा उसका। तो इसलिए उस ये हम लोग ने तय किया कल वर्किंग कमेटी में कि कांग्रेस अपने कार्यक्रम में जो परंपरा हमारी चली आ रही है 90 सालों से, हम उस परंपरा के अनुसार हम इस गीत को गाएंगे।
9: हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम गाते गाते दम तोड़ दिए थे, आप लोग कहाँ थे? इतने साल आप लोग भी यही गाना गाए थे, 12 साल से आप हुकूमत में बैठे, आपने भी यही गाना गाए थे, रातों रात आप याद आ गए। जो आदमी लोग पार्लियामेंट में आ नहीं सकते, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे सकते, बच्चों पर आपकी ताकत लाद के आप उनको पिटवाते हैं, आप हमें समझा रहे हैं कि हम क्या चीज है।
4: And amid fierce political contest over Vande Mataram, the veteran actor Sharmila Tagore has weighed in, saying that she supports singing of the first two stanzas of Vande Mataram. Her argument is that while those opening verses are inclusive and capable of bringing together people of all faiths, the later stanzas with their religious imagery may not be equally acceptable to everyone in a country as diverse as India. However, actor and BJP MP Kangana Ranaut has now responded, saying that Sharmila Tagore's understanding of art and poetry is limiting. Kangana argues that Vande Mataram is inseparable from India's freedom struggle and should be viewed as a unifying national symbol.
10: मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू टैंसा इज वेरी गुड।
4: With that, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.
11: Launch control, 0 to 100.
12: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
13: This car makes no sense, yet it makes every sense.
14: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
15: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not."
16: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
17: Across the country,
18: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change.